मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा के सभी श्रोताओं को नंदिता चतुर्वेदी का नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी ग्वालियर है। सुबह के 6 बजने को हैं। समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले प्रसारण की।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर

0: मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना का श्री गणेश हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देश गान से।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देश गान। वंदना की अगली प्रस्तुति अब लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में भजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओ, इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब लीजिए सुनिए ओम व्यास के स्वर में ये भजन।

ओम व्यास के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। इस भजन की प्रस्तुति के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के स्वर में एक और भजन।

अभी आप सुन रहे थे भजन, स्वर मुकेश का था। अब आज की वंदना का अंतिम पुष्प हम सूर्य देव के सम्मुख समर्पित कर रहे हैं, महेंद्र कपूर एवं साथियों के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये सूर्यदेव की आराधना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शुक्ररत्न उपाध्याय के विचार। विषय है मन। वाचक स्वर तुलिका शर्मा का है।
1: मन विचारों और संकल्पों की एक बहती हुई नदी है, अथवा विचारों, संस्कारों, भावनाओं, वृत्तियों और वासनाओं की एक गठरी है। अनेक पदार्थों के संग से उत्पन्न हुई इच्छाओं एवं सांसारिक चिंताओं से उत्पन्न होने वाली भावनाओं का समूह है। ये इच्छाएं, विचार, अनुभव निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं तथा पुराने के स्थान पर नए नए विचार और अनुभव उसका स्थान लेते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण साहित्य में अवसर पाते ही मन रूपी दर्पण की स्वच्छता पर बहुत बल दिया है और अशुद्ध मन वालों को बहुत डांट बताई है और कहा है कि जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है वे कभी भी परम सत्य या ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत के अनुसार मन का स्थान हृदय है। जागृत अवस्था में ये मस्तिष्क में रहता है। हठ योग के मन से अस्थायी रूप से मन का स्थान आज्ञा चक्र है। मन की अनेक शक्तियां और केंद्र होते हैं, वो मस्तिष्क में तत्संबंधी केंद्रों के द्वारा काम करता है। मन जड़ है, जैसे लौह शलाका अपनी उज्ज्वलता तथा प्रकाश अग्नि से प्राप्त करती है, वैसे ही मन अपनी शक्ति तथा ज्योति स्वप्रकाश आत्मा अथवा शुद्ध चैतन्य से प्राप्त करता है। मन मल कामनाओं तथा तृष्णाओं से परिपूर्ण है। ये तुच्छ राग द्वेष, आवेश, क्रोध, लोभ, भय आदि से मोह को प्राप्त होकर कांपता रहता है। चिंता और भय नित्य ही रक्त में लाल कीटाणु लाखों की संख्या में नष्ट करते रहते हैं। शरीर मन का अनुगामी है। जैसा विचार मन में प्रवेश करता है उसी के अनुसार प्रत्येक कोषाणु वृद्धि या ह्रास को प्राप्त होता है। यदि मन में किसी प्रकार के पतन का विचार उत्पन्न होता है तो शरीर तत्काल पतन की ओर चल पड़ता है। शुद्ध स्वस्थ मन हो तो शरीर भी स्वस्थ होता है। शरीर को आक्रांत करने वाले रोगों का मुख्य कारण दुर्विचार होता है। जो कुछ आपके मन में होगा वो आपके शरीर में प्रकट हो जाएगा। शारीरिक रोग तो गौण रोग कहलाते हैं, जबकि मन को प्रभावित करने वाली वासनाएं मानसिक अथवा मुख्य रोग कहलाती हैं। यदि कुविचारों को नष्ट कर दिया जाए तो शरीर के सभी रोग जाते रहेंगे। मन का संयम करने से शरीर का भी पूर्ण संयम हो जाता है। शरीर मन की छाया है। आज जल, वायु, आकाश सर्वत्र प्रदूषण दिखाई देता है। सभी प्रकार के प्रदूषणों से वातावरण को मुक्त करने के लिए भारत सरकार का एक पूरा मंत्रालय जुटा हुआ है। इन सभी प्रदूषणों से चिंताजनक एवं शक्तिशाली प्रदूषण है मनुष्य के भीतर का प्रदूषण, मन का प्रदूषण। आज संपूर्ण विश्व में भय, घृणा, द्वेष एवं तनाव का वातावरण पैदा करने में प्रमुख कारण व्यक्ति का प्रदूषित मन है। कलुषित मन कलुषित विचार को जन्म देता है। कलुषित विचार अपने आसपास और कटुता बढ़ाते हैं। कलुषित विचारों का प्रदूषण हवा, पानी और ध्वनि के प्रदूषण से भी अधिक घातक है। कलुषित मन का व्यक्ति यदि अंतर्मुखी है तो वह खुद को विनष्ट करने में लग जाता है। यदि वो बहिर्मुखी है तो समाज को हानि करता है। किसी व्यक्ति के मन का प्रदूषण समाज के लिए कितना घातक है, इसका जवाब देने के लिए ये देखना होगा कि उस व्यक्ति के प्रभाव का घेरा कितना बड़ा है। प्रदूषित मन की निरोगता किसी औषधि से नहीं प्राप्त की जा सकती। ये इसलिए कि औषधि भौतिक पदार्थ है और मन भौतिक पदार्थ नहीं।

0: नहीं है। औषधि का प्रभाव केवल भौतिक शरीर तक ही होता है, मन चित्त में उठने वाली स्मृतियों, वृत्तियों और विचारों का पुंज है। इसलिए इसका इलाज विचारों से ही संभव है। मन यदि कुत्सित विचारों का पुंज बना रहेगा तो उसे सद्विचारों तथा दिव्य गुणों से युक्त प्रभु के संस्मरण की औषधियों से ही स्वस्थ किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर शुक्रत्न उपाध्याय के विचार। विषय था मन। वाचक स्वर तुलिका शर्मा का था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। श्रोताओं लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ अभी आपने सुना। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, सब्जी उगाने के पहले आप नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी जब बनाते हैं तो नर्सरी थोड़ी जमीन से 3-4 इंच ऊंची बनाएं और उस नर्सरी में रोग लगने के पूर्व ही उसमें आप थायरम और कार्बन डाइजिन 50-50 ग्राम एक क्यारी में आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि नर्सरी में जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें तना विगलन और तना गलन नाम का रोग आ जाता है और थोड़े से जब पौधे बड़े हो जाते हैं 15-20 दिन के 10 दिन के तब उनमें हल्के हल्के गोल गोल धब्बे पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे आते हैं और हमारी ये नर्सरी में ही पौधों को खराब कर देते हैं और फिर उसके बाद जब हम उनको खेत में ले जाते हैं तो हमारी ऐसे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और जितनी हमें फसल मिलना चाहिए उतनी फसल नहीं मिलती है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही नर्सरी से ही हमारे जो सब्जियों की कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए रोकथाम करना आवश्यक होता है। जब नर्सरी में पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, 4-5 इंच के हो जाएं, उस वक्त मैनकोजैब नाम की एक दवा आती है, 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसमें नर्सरी में छिड़काव कर दें, 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर दें तो आपका जो ये पत्ती धब्बा रोग आते हैं ये रोग नर्सरी में नहीं आएंगे और नर्सरी में पौधे आपको एकदम स्वस्थ मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। ऐसे पौधों को आप फिर अपने खेत में वहाँ उनकी रोपाई करें। जैसे इसमें नर्सरी में आप जो है खरीफ में जो सब्जियों की फसलें हैं उसमें आपका टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है और आपके ये वाली फसलें लेते हैं। इस मौसम में किसान भाई बहुत तादाद में भिंडी भी लेते हैं तो इन सब फसलों में नर्सरी के बाद जब रोपाई करते हैं उसके बाद में फिर उसमें पत्ती धब्बा रोग अगर दिखाई दे तो आप मैनकोजैब नाम की दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में 1 बीघा खेत के लिए पर्याप्त होती है उसका छिड़काव कर दें तो पत्ती धब्बा रोग इसमें आपकी फसलों में नहीं आएगा। खरीफ के मौसम में विशेष रूप से खरपतवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों में निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार अगर खेत में ज़्यादा होंगे तो उसमें कीट बढ़ने की संभावना होती है। कीटों में हरा मच्छर है, माहू है, जैसिड है, एफिड है और सफ़ेद मक्खी है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है कोकड़ा रोग को फैलाते हैं या पीला मोज़ेक नाम के रोग को भी फैलाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये रोग ना अपने खेत में फैलें और हमारी जो सब्जियां हैं वो स्वस्थ और अच्छे पौधे हमारे खेत में मिलें इसके लिए इन कीटों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कीट स्वस्थ पौधों में रोग फैला देते हैं। जो हमारे रोगग्रस्त पौधे हो जाते हैं उनका जो है रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद में ये स्वस्थ पौधों पर जाते हैं और वहाँ भी रस चूसते हैं तो जो इनके वायरस के विषाणु के इनके पेट में जाता है कीटों के पेट में, इसके बाद में ये स्वस्थ पौधों पर उस रस को छोड़ देते हैं और हानिकारक और जो रोगग्रस्त पौधों के रस चूस करके आते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे ये पूरे खेत में ये कोकड़ा रोग और पीला मोज़ेक रोग फैल जाता है। तो अगर इस तरह का रोग आपको खेत में दिखाई दे तो सबसे पहले आप ऐसे रोगग्रस्त पौधों को निकाल करके और गड्ढे में डाल करके उसको मिट्टी से बंद कर दें या नष्ट कर दें और साथ साथ दवाई का छिड़काव भी करें। दवाइयों में आप जो है मेलाथियन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन दवा जो बाजार में उपलब्ध है, इसके अलावा एक दवा और है डाइमेथोएट। इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा लें। ये दवा जो है 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। जैसे अगर 1 बीघा आपका खेत है, सब्जी लगी हुई है, तो उसमें 150 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो हमारी जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं इनमें आपका कीट नियंत्रण आसानी से हो जाएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जेसी गुप्ता। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस, और आज के दर्पण कार्यक्रम में सबसे पहली जो सूचना है वो इसी संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में है। कारगिल युद्ध विजय दिवस के 27वें महोत्सव का आयोजन आज महाराज बाड़ा पर किया जाएगा। 26 साल से चले आ रहे परंपरागत आयोजन में कारगिल युद्ध में शहीद 527 शहीदों को आज सैन्य सलामी दी जाएगी। इस मौके पर वीर नारियों का सम्मान और कवि सम्मेलन भी होगा। आज सुबह 8:30 वंदे मातरम के घोष के साथ शहीदों को सैन्य सलामी दी जाएगी। कार्यक्रम में वीर नारियों का सम्मान कर उनके परिवार का परिचय मंच से दिया जाएगा। शाम को 6:00 तिरंगा यात्रा के माध्यम से वीर शहीदों को याद किया जाएगा। इसके बाद शाम 7:00 से आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवि शहीदों की शान में अपनी देशभक्ति की रचनाओं से वीरता का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर शहरवासियों के साथ पूर्व सैनिक भी महाराज बाड़ा पहुंचकर वीर शहीदों की शहादत को सलाम करेंगे। श्रोताओं, एक अन्य सूचना जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करने से संबंधित है। अब श्रावण मास में भगवान अचलनाथ को अर्पित किए जाने वाले दूध, दही और गंगा जल सीधे सीवर में जाने के बजाय मंदिर प्रांगण में 8 फीट गहरे और 8 फीट चौड़े टैंक में जमा होंगे। अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु जो भगवान शिव के अभिषेक में चढ़ाते हैं दूध, दही और जल और फूल मालाएं भी, इनके उचित प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मंदिर के इतिहास में पहली बार अभिषेक से निकलने वाली सामग्री को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने और उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई है। आज सुबह 10:00 इस व्यवस्था का शुभारंभ किया जाएगा। इस टैंक में जमा अभिषेक के पंचामृत और पुष्पों को निस्तारण के लिए लाल टिपारा गौशाला में भेजा जाएगा। मंदिर पर अभिषेक के जल, दूध, दही और साथ साथ फूल मालाएं भी जो बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, तो अभी तक इस सामग्री के कारण मंदिर परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या बनी रहती थी। इसे देखते हुए मंदिर परिसर में ये टैंक तैयार किया गया है। इसमें मोटर लगाई गई है जिसकी सहायता से मंदिर पर चढ़ने वाला दूध, दही और जल एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद मोटर के माध्यम से इस सामग्री को टैंकर में भरा जाएगा और फूल वालों को अलग से ट्रॉली में रखे बॉक्स में एकत्र किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था के तहत प्रतिदिन ट्रैक्टर के माध्यम से अभिषेक सामग्री और फूल मालाओं को मंदिर परिसर से हटाकर निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संबंधित सामग्री को गौशाला भेज दिया जाएगा। न्यास की ओर से की गई इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के साथ साथ अभिषेक सामग्री के उचित उपयोग और निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी।

0: और मंदिर परिसर में भी स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम दर्पण में इतना ही। ये आकाशवाणी ग्वालियर है, सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिनशर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गत 10 दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिकयात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्रयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुः विभिन्नदेशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्ताः अकरोत्, व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे, परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय, दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्रिकार्यालयः, सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं

0: सार्धचतुर्वादने दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। विंशति प्रतिविंशतेः पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप

0: जीतती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी
2: के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद सुबह 7:10 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे सुबह 7:20 से, समाचार प्रभात सुबह 8 से और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 से हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 कलाकार होंगी पूजा वंशकार। इस घंटे की खास खबर आज की इस सभा में श्रोता सुन सकेंगे सुबह 8:58 से, सुबह 11:58 से, दोपहर 12:58 से और दोपहर 2:58 से। सूचनाओं और समाचारों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रसारित किया जाएगा सुबह 9 से। सिंधी कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से रिले होगा आज सुबह 9:30 से। जिले की चिट्ठी श्रोता सुन सकेंगे सुबह 10 से। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित होगा सुबह 10:05 से। सुबह 11:00 से हम आपको सुनवाएंगे हमारा अति महत्वपूर्ण प्रसारण, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों के लिए मन की बात। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे दोपहर 12:00 से। इसे हम अपने मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और इसी के साथ ही इस सभा की समाप्ति तक के सभी कार्यक्रम हम अपने मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, जिनमें दोपहर 12:30 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, दोपहर 1:00 से कार्यक्रम महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा, आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा, दोपहर 1:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम और दोपहर 1:45 से सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होंगे। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2:10 से और दोपहर समाचार दोपहर 2:15 से प्रसारित होंगे। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान प्रसारित होगा दोपहर 2:30 से, चित्रपट संगीत दोपहर 2:50 से और दोपहर 3:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। हमारी आज की दूसरी सभा में शाम 5:02 से युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा, भजन संध्या शाम 6:02 से। हमारे केंद्र से आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे कारगिल विजय दिवस और लाडली लक्ष्मी योजना। इसके साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम अपनी ग्रामीण बहनों को सुनवाएंगे यकृत के प्रमुख रोग एवं बचाव, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार से कल्पना प्रदीप की बातचीत हमारी बहनें सुन सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात के 136वें एपिसोड में देश से संवाद। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवाड़ी को देंगे 193 करोड़ के कार्यों की सौगात। और प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आईं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसिडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी, वहीं रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद पहली राजकीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के जरिए हुआ, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया। CJP ने बताया कि सरकार ने उनकी सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं, जिनमें नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देना भी शामिल है। पार्टी के अनुसार केंद्र और NDA शासित राज्यों में आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी और भविष्य में कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे संयुक्त कार्यालय कलेक्टर भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। डॉ. यादव निवाड़ी में 46 और पृथ्वीपुर में 29 राजस्व स्टाफ आवासों का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा जिला चिकित्सालय निवाड़ी के 100-बिस्तरीय भवन को अपग्रेड किया जाएगा। जेवरा, पृथ्वीपुर और सेंद्री में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण होगा। प्रदेश में पेपर लीक, नकल और परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन अदालतों को नामित किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पहल पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। ये अदालतें प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

0: बिहारियों के हित में लिए गए निर्णय।
1: दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दतिया में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने परिवार आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि सभी समाज को संगठन में उचित भागीदारी मिल सके। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉडल और अभिनेत्री ट्यूषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित उनकी सास और भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। विशेष सीबीआई न्यायालय ने कल देर शाम उनकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरिबाला सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। वहीं सीबीआई ने कहा कि सिर्फ उम्र या महिला होने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। अब गिरिबाला सिंह और सह आरोपी समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 90,000 अतिथि शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी CL मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब तक अतिथि शिक्षकों को सत्र में एक भी CL नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत पदभार ग्रहण करते ही शिक्षक को एक दिन की CL मिलेगी और हर 30 दिन की सेवा पर एक अतिरिक्त CL जुड़ेगी। हालांकि एक बार में अधिकतम 3 CL ही ली जा सकेंगी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये दिन उस विजय अभियान को याद दिलाता है जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से रणनीतिक पर्वतीय शिखरों को वापस हासिल किया था। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और सुगम बना दिया गया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को एकादशी के दिन नई दर्शन व्यवस्था लागू की है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि सुखदेव मुनि द्वार के चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब श्रद्धालुओं को 10 फीट की दूरी से दर्शन कराए जा रहे हैं और दर्शन के बाद उनकी निकासी चांदी द्वार से की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं का दल कल मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। जिला योजना भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को विदा किया। श्रद्धालुओं का ये दल बसों से नैनपुर पहुंचा, जहाँ से आगे की यात्रा रेल मार्ग से की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकराम भरसेट ने कल सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा की। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 6 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के ग्राम खटोला से 24 जुलाई को रेस्क्यू किए गए तेंदुए की उपचार के दौरान कल मृत्यु हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुए को रेस्क्यू के बाद चिकित्सालय में निगरानी के लिए रखा गया था। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीट बरबसपुर में कल एक मादा बाघिन का रेस्क्यू कर उसके गले में लगे रेडियो कॉलर को हटाकर उसे प्राकृतिक आवास जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। और शाजापुर पुलिस लाइन में कल रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है कुछ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज सुबह उठते ही आपने कैलेंडर तो अवश्य देखा होगा। कैलेंडर नहीं तो समाचार पत्र तो हाथ में लिया ही होगा और उसी के साथ आपने देखा होगा कि आज तारीख है 26 जुलाई। कैलेंडर में ये एक सामान्य तारीख हो सकती है, लेकिन हर भारतीय के दिल में इसका अर्थ बहुत अधिक गहरा है। ये दिन उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की सीमाओं की रक्षा की। ये उन माताओं के साहस को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने बेटे देश के नाम कर दिए। उन पत्नियों के धैर्य को सलाम करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन साथी को तिरंगे में लिपटा हुआ स्वीकार किया। और उन बच्चों के सपनों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने पिता को खो दिया लेकिन उनके साहस पर हमेशा गर्व किया।

श्रोताओ, आप समझ ही गए होंगे, आज भारत 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। लगभग 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन द्रास की बर्फीली चोटियां आज भी उस संघर्ष को याद करती हैं।

शतौद्रास की उन बर्फीली चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने असंभव दिखने वाली परिस्थितियों में भी विजय हासिल की। कारगिल विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे विश्व के सामने भारत के साहस, संयम और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। और द्रास की उन चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने इस तिथि को साहस, त्याग, कर्तव्य और देशभक्ति के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में देश के इतिहास में दर्ज करा दिया, जिसे हमारा देश सदैव गर्व के साथ याद करता है। आज का दिन उन अमर वीरों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की रक्षा की। ये दिन उन परिवारों को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने अपने परिवार के बेटे, भाई, पति या पिता को देश के लिए समर्पित कर दिया।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: So, your place or mine?
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओ, साल 1999 की शुरुआत दक्षिण एशिया में शांति की नई उम्मीद लेकर आई थी। लाहौर घोषणा के बाद ये विश्वास जगा था कि अब एशिया के, दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में दोनों ही देश बातचीत और भरोसे के साथ रिश्तों को नई दिशा देंगे। लेकिन इसी दौरान पर्दे के पीछे रची गई साजिश ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया। सर्दियों की आड़ में सेना के नियमित सैनिक और घुसपैठियों जिस प्रकार से LOC को पार करके कारगिल, द्रास, बटालिक, मशको और काकसर क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा करने के लिए आए, इन चोटियों से वे श्रीनगर, लेह को जोड़ने वाले तत्कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, जो अभी NH1 के नाम से जाना जाता है, उस पर नज़र रख सकते थे। यदि ये मार्ग बाधित हो जाता तो लद्दाख तक सेना की रसद और सैन्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। हालांकि शुरुआत में तो इसे सीमित घुसपैठ ही माना गया, लेकिन जल्द ही ये भी स्पष्ट हो गया कि ये तो एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने बिना देर किए जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया और साल 1999 में ऊंचे बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में एक कठिन संघर्ष हुआ। ये क्षेत्र अत्यंत दुर्गम था, वहाँ सांस लेना भी कठिन होता है। कई स्थान समुद्र तल से लगभग 16 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं।

इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है, तापमान कई बार शून्य से बहुत नीचे चला जाता है और तेज़ बर्फीली हवाएं लगातार चलती रहती हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे वीर सैनिकों ने अद्भुत साहस, धैर्य और अनुशासन का परिचय दिया। उन्होंने एक एक चोटी को वापस सुरक्षित किया और 26 जुलाई 1999 को हमें विजय प्राप्त हुई। तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

शतो भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन विजय शुरू किया तो लक्ष्य स्पष्ट था, भारत की एक एक इंच भूमि को दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराना। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के माध्यम से हवाई सहायता दी, जबकि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाकर समुद्री मोर्चे पर रणनीतिक दबाव बनाया। तीनों सेनाओं के समन्वित अभियान ने ये साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो भारत पूरी शक्ति और रणनीति के साथ जवाब देता है।

लेकिन ये युद्ध किसी सामान्य मैदान में नहीं लड़ा जा रहा था। भारतीय सैनिकों को उन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़कर लड़ना था जहां दुश्मन पहले से ऊंचाई पर बैठा था। लेकिन भारतीय रणबांकुरे आखिर कब किससे डरे हैं, कौन सी परिस्थिति उनका रुख मोड़ पाई है।

श्रोताओ, सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार जिन परिस्थितियों में हमारे भारतीय सैनिक थे उनमें हमला करना किसी भी सेना के लिए सबसे कठिन चुनौती होता है। यही कारण है कि इस युद्ध को आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे कठिन पर्वतीय लड़ाइयों में गिना जाता है। आइए हम आपको बता दें तारीखवार कि इस युद्ध में कब कब किस प्रकार से भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय को पूर्ण किया गया। 3 मई को बंजू क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों ने घुसपैठ की जब सूचना दी तो 5 मई को कैप्टन सौरभ कालिया का दल जांच के लिए रवाना हुआ। 18 मई को भारतीय सेना ने पॉइंट 4295 और 4460 पर नियंत्रण कर लिया। 21 मई को 8 सिख रेजिमेंट ने टाइगर हिल की घेराबंदी शुरू की और 26 मई को ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत वायुसेना ने हवाई अभियान शुरू किया। इसके बाद 13 और 14 जून को द हम्प और टोलोलिंग पॉइंट 4590 पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। 20 जून को पॉइंट 5140 भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया।

श्रोताओं, हमारे सैनिकों के कठिन परिश्रम के चलते 28 जून को भारतीय सेना ने पॉइंट 47 ओओ पर जीत दर्ज की और उसके बाद 29 जून को ब्लैक रॉक, थ्री पिंपल और नोल क्षेत्र को मुक्त करा लिया। 1 जुलाई को पॉइंट 5 ओओओ पर भारतीय सेना का नियंत्रण हुआ और 3 जुलाई को पॉइंट 5287 पर कब्जा भारतीय सेना ने कर लिया। 8वीं सिख रेजिमेंट द्वारा टाइगर हिल की घेराबंदी भी 3 जुलाई को पूरी कर ली गई। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और 12 से 18 जुलाई के बीच दूसरी सेना को शत्रु सेना को वापसी का अवसर देने हेतु युद्ध विराम लागू किया गया, लेकिन इसके उल्लंघन के बाद युद्ध फिर शुरू हो गया। 24 जुलाई को जुलू स्पर कॉम्प्लेक्स पर भारतीय सेना ने कब्जा किया और अंततः 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय सफल हुआ। कारगिल में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली।

0: श्रोताओं, कहा जाता है कि सीमाएं केवल नक्शों से सुरक्षित नहीं होती, उन्हें सुरक्षित रखते हैं वे लोग जो हर मौसम में अटल होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे सैनिक यही कार्य करते हैं। वे कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटते, चुनौतियों से घबराते नहीं, अपने साहस, अनुशासन और समर्पण से राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आइए आज के इस दिन हम सैल्यूट करें भारतीय सेना के हर जवान को, और आज्ञा दीजिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं, समाचार प्रभात। अब हमारे दिल्ली के
1: जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
5: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है।

0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश

0: मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पूजा वंशकार। आपके साथ हारमोनियम पर आपका साथ दे रहे हैं अक्षत मिश्रा, ढोलक पर संगत कर रहे हैं राजेश वंशकार और सारंगी पर हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान। तो आइए सुनते हैं पूजा वंशकार की आवाज़ में सबसे पहले एक सावन गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पूजा वंशकार के गाए लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे एक सावन गीत, और अब आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गारी।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
0: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पूजा वंशकार के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में ये लांगुरिया।

लोक संगीत के एक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पूजा वंशकार के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। इस घंटे की खास खबर अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा और उत्तर मेडिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये दिन उस विजय अभियान की याद दिलाता है। दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दतिया में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं का दल कल मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। मौसम विभाग ने आज शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। और भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हर एक भारतवासी के लिए गौरव का दिन है, गर्व का क्षण है, जब हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तान के घुसपैठियों के खिलाफ जब भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, तो देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और शहादत को सदैव याद रखने के उद्देश्य से ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में भी कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, वीरता और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज के दिन भी इस स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वास्तव में अगर देखें तो ये स्मारक एक केवल निर्माण नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। यहाँ कारगिल युद्ध की वीर गाथा को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और त्याग से परिचित हो सके। स्मारक परिसर में कारगिल युद्ध से जुड़े प्रसंगों और शहीद सैनिकों की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया गया है। कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक को देश के प्रमुख कारगिल स्मारकों में स्थान मिलने के साथ ही ग्वालियर के लिए भी ये गौरव का विषय है। तो आज के दिन आप अवश्य यहाँ जाएं और अपने बच्चों को भी अवश्य ले जाएं। बलिदान दिवस पर होने वाला आयोजन शहीदों की स्मृति को नमन करने के साथ ही उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश देगा और निश्चित रूप से देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा भी देगा। ये स्मारक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की अमर गाथा को हमेशा जीवंत रखेगा। श्रोताओं, इस स्मारक में कारगिल युद्ध के साथ साथ देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की गाथाओं को भी स्थान दिया गया है। इनमें हवलदार सरमन सिंह की शौर्य गाथा विशेष रूप से प्रेरणादायी है। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनके साहस और बलिदान को स्मारक में सम्मानपूर्वक प्रदर्शित किया गया है। स्मारक परिसर में स्थापित प्रतिमाएं और युद्ध से जुड़ी सामग्री युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करती है। यहाँ आने वाले लोगों को भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की जानकारी मिलती है। श्रोताओं, 26 जुलाई 1999 को जब भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक इतिहास रचा, तो इस ऐतिहासिक विजय के वर्ष 2026 में 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 84 दिन चले कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। इन्हीं अमर शहीदों में ग्वालियर का भी एक बेटा था। ग्वालियर के हवलदार सरमन सिंह सेंगर भी इन वीर शहीदों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराने के बाद 4 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर शहीद सरमन सिंह सेंगर की शौर्य गाथा सुनाते हुए इनके परिजनों की आंखें हालांकि आज भी नम हो जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बेटे की शहादत का गर्व साफ दिखाई देता है। उनका कहना है कि देश की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सरमन सिंह ने उस धर्म का सर्वोच्च पालन किया। 28 जून 1999 को सरमन सिंह सेंगर की टुकड़ी टाइगर हिल्स की चोटी पर पहुंची और मौके का फायदा उठाते हुए सरमन सिंह ने संगीन से हमला कर 4 शत्रु सैनिकों को ढेर कर दिया। वे लगातार दुश्मनों से लड़ते रहे। टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराने के दौरान दुश्मन की गोलीबारी में वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने कारगिल विजय की कहानी में ग्वालियर का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। सरमन सिंह सेंगर सेकंड राजपूताना राइफल्स में हवलदार थे और कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, इसलिए कारगिल युद्ध शुरू होते ही उन्हें अपनी टुकड़ी का सेक्शन लीडर बनाया गया। पहले चरण में उनकी टीम ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तोतोलिंग चोटी पर कब्जा किया।
इसी दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी। सैन्य चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया कि देश पहले है। चार बहनों के बाद जन्मे सरमन सिंह सेंगर परिवार के सबसे लाडले बेटे थे। परिवार नहीं चाहता था कि वे सेना में जाएं, लेकिन उनके मन में बचपन से ही वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना था। और उस समय जब ग्वालियर में सेना की खुली भर्ती चल रही थी, सरमन सिंह इस भर्ती में घर वालों को बिना बताए शामिल होने के लिए पहुँचे। पहले दो दिन चयन नहीं हुआ, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन उनका चयन हो गया। और जब बात तोतोलिंग चोटी की आ ही गई है, तो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक और ऐसे ही वीर सैनिक की यादें, नायक सोदान सिंह तोमर की जुबानी। श्रोताओं, तोतोलिंग की वो रात आज भी इनकी आंखों के सामने ताज़ा है। दुश्मन ऊंचाई पर था, गोलियां बरस रही थीं और हर कदम मौत से मुकाबला था। तभी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमबी रविंद्रनाथ ने कहा, आज मुझे तोतोलिंग दे दो। बस वही शब्द इस टुकड़ी की ताकत बन गए। ये कहना है नायक सोदान सिंह तोमर का। इन्होंने कारगिल युद्ध की उस ऐतिहासिक लड़ाई को शब्दों में पिरोकर नई पीढ़ी तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी स्मृतियों और सैन्य अनुभवों के आधार पर तोतोलिंग विजय की एक कहानी तैयार की है, जो आज सैनिकों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। वो कहते हैं कि वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन ने जब कब्जा किया और तोतोलिंग पर दो प्रयास हमारे असफल हो गए, तब उनकी बटालियन को ये जिम्मेवारी मिली। कठिन चढ़ाई, बर्फीली हवा और दुश्मन की लगातार फायरिंग, लेकिन जवानों का हौसला नहीं टूटा। वे कहते हैं कि अंतिम हमले से पहले कर्नल रविंद्रनाथ ने जवानों से कहा, तुम मेरे परिवार हो, तुमने हमेशा मुझे गर्व महसूस कराया है, आज मुझे सिर्फ तोतोलिंग चाहिए। ये सुनते ही पूरी टुकड़ी ने एक स्वर में जवाब दिया, यस सर। इसके बाद जवान दुश्मन की चौकियों पर टूट पड़े। तोतोलिंग पर तिरंगा तो लहराया, लेकिन इसकी कीमत कई वीर साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। चार अधिकारी, दो जेसीओ और कई जवान शहीद हुए, जबकि अनेक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। ये जीत कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग करते ही हैं। सुबह उठते ही बिजली से चलने वाले पंखे, बल्ब, गीजर, मिक्सर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, न जाने कितने ही उपकरणों का प्रयोग हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। खाना बनाने के लिए हम गैस का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ ही इंडक्शन, इलेक्ट्रिक केटल, ऐसे ही कई सारे उपकरण।

स्कूल, कार्यालय या अन्य स्थानों पर जाने के लिए भी हम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले वाहन या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग करते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए बिजली

आसान बना देती है ऊर्जा। यदि ऊर्जा ना हो तो कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई वाहन नहीं चलेगा, और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ऊर्जा के बिना ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। हमारे शरीर को भी तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम चल फिर पाते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने सभी कार्य कर सकते हैं। इसलिए इस ऊर्जा को संरक्षित करके रखना बहुत ही आवश्यक है, इसका दुरुपयोग रोकना उतना ही आवश्यक है, और इसका सदुपयोग करना हम सभी का परम कर्तव्य है। ऊर्जा का आवश्यकता अनुसार और समझदारी से उपयोग करना तथा उसकी अनावश्यक बर्बादी को रोकना ही ऊर्जा संरक्षण के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बिजली या ईंधन का उपयोग करना ही बंद कर देना है या हम ऊर्जा का उपयोग ही ना करें, लेकिन वास्तव में श्रोताओ देखें तो ऊर्जा की जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही उपयोग करें, और जहाँ बचत संभव हो वहाँ अवश्य बचत करें, यानी कि मित व्ययता। आज विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बिजली, ईंधन और अन्य ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा के अधिकांश पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए यदि हम इनका अत्यधिक उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये समाप्त होने लगेंगे। इसके अलावा इन ईंधनों के अधिक उपयोग से वायु प्रदूषण भी तो बढ़ता है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, असामान्य वर्षा या सूखा या बाढ़, ऐसी अनेक सारी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे पर्यावरण में उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ऊर्जा की बचत करना हमारे लिए केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने आसपास ध्यान दें तो हम पाएंगे कि प्रतिदिन बहुत अधिक ऊर्जा अनजाने में ही व्यर्थ चली जाती है। कई बार हम कमरे से बाहर निकल जाते हैं लेकिन पंखा, लाइट और एसी बंद करना ही भूल जाते हैं। कई घरों में दिन के समय भी अनावश्यक रूप से बिजली की लाइटें जलती रहती हैं। मोबाइल पूरा चार्ज हो गया फिर भी घंटों तक प्लग में लगा रहता है। एसी बहुत कम तापमान पर चलाते हैं और भले उसके बाद हमें रजाई ही क्यों न ओढ़नी पड़े, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो ऐसे ऊर्जा का दुरुपयोग करना सरासर गलत है। सबसे आसान हमारे लिए उपाय है कि यदि कोई कमरे में नहीं है तो पंखा है, लाइट है, एसी है या कोई भी अन्य विद्युत उपकरण हम तुरंत बंद कर दें। यदि हम अपने खाना पकाने को ही ले लें, हमने जब खाना पकाया उसी समय सभी लोग बैठ कर के अगर खाना खा लेते हैं तो उस भोजन को बार बार गर्म करने में हम जिस ऊर्जा का अपव्यय करते हैं हम उसे भी बचा सकते हैं। श्रोताओ, सूर्य का प्रकाश निःशुल्क है। यदि दिन के समय हम अधिक से अधिक प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें तो ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हमें विटामिन डी भी उससे मिलेगी, हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, और दिन में पर्याप्त रोशनी होने पर बिजली की लाइट बंद करने से हमारी ऊर्जा की बचत भी होगी और बिजली के बिल मतलब यानी आर्थिक बचत भी होगी। इसी प्रकार साधारण बल्बों के स्थान पर अगर हम एलईडी बल्बों का उपयोग करते हैं तो एलईडी बल्ब कम बिजली खर्च करते हैं, अधिक प्रकाश देते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे ही मोबाइल है, लैपटॉप है या दूसरे जो उपकरण हैं, ये जब एक बार चार्ज हो जाएं तो उन्हें चार्जर निकाल दें, इससे अनावश्यक बिजली की खपत कम होगी। हाँ, कई लोगों की ये भी आदत होती है कि रात में सोते समय वो मोबाइल को, लैपटॉप को या अपनी अन्य डिवाइसेस को चार्जिंग पर लगा करके सो जाते हैं, इससे डिवाइसेस का नुकसान तो होता ही है, साथ ही किसी अवांछित घटना के घटने की भी आशंका रहती है। तो कभी भी रात में अपनी किसी डिवाइस को आप चार्जिंग पर लगाकर किसी भी स्थिति में मत सोएं, इससे भी आपकी ऊर्जा की बचत होगी। जहाँ तक संभव हो आप लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करें तो आप शारीरिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे। केवल एक या दो मंजिल ऊपर जाना है तो क्यों लिफ्ट का उपयोग करना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और ऊर्जा के लिए भी। ऐसे ही छोटी दूरी के लिए अगर हमें जाना है तो हम पैदल चलें
या साइकिल का उपयोग करें।

इससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर अगर हमें कहीं जाना है और उस स्थान पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन अगर मौजूद है तो हम अपना अलग अलग वाहन लेकर जाने के स्थान पर उस सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। इससे हमारी आर्थिक बचत भी होगी और ऊर्जा की बचत भी होगी। और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम पानी की भी बचत करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी बचाने का ऊर्जा से क्या संबंध है। वास्तव में पानी को पंपों से निकालना, उसे शुद्ध करना, घरों तक पहुंचाना, इन सभी कार्यों में बिजली की भी तो आवश्यकता होती है। इसलिए पानी की बचत करना भी अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा संरक्षण ही है। आज पूरे विश्व में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि प्रकृति से बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं और इनसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से हम ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करें तो निश्चित रूप से हम ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे पाएंगे। इस आदत को बचपन से ही विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि विद्यालय में शिक्षक और घर पर माता पिता बच्चों को अभी से ही ये आदतें विकसित कराएं कि कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट और पंखा बंद करें, अपने क्लासेस में एक इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर अपॉइंट करें, घर पर भी ऐसा ही करें कि किसी बच्चे को ये उत्तरदायित्व दें, तो इससे बच्चे एक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना भी सीखेंगे और ऊर्जा की बचत में भी अपना योगदान देंगे। ऐसे ही रात को सोने से पहले किसी एक व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दें कि सभी लाइटें बंद करनी हैं, ये चेक करना है कि पानी का नल कहीं खुला तो नहीं छूट गया, क्या कोई बिजली का उपकरण तो खुला नहीं छूट गया। ऐसी आदतें बड़े लोग स्वयं भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं, तो इससे करने से हमारी ऊर्जा को हम संरक्षित कर पाएंगे। आपसे कार्यक्रम में बातें तो हम आगे भी करेंगे, पर अभी आइए सुनते हैं एक गीत।

श्रोतो, आप यदि एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद इमरजेंसी SOS फीचर आपकी सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। आइए आपको एक नई जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम देते हैं कि इस फीचर की मदद से किस प्रकार से किसी भी आपात स्थिति में कुछ ही सेकंड में इमरजेंसी सर्विस या आपके भरोसेमंद संपर्कों तक मदद का संदेश पहुँचाया जा सकता है। इस फीचर को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद इमरजेंसी SOS विकल्प चुनना है, यहाँ जाकर इस फीचर को इनेबल करना है। इसके बाद चेंज सेटिंग्स में जाकर स्टार्ट एक्शंस ऑटोमेटिकली विकल्प को चालू कर देना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर सभी निर्धारित कार्यवाही अपने आप हो सके। अब कॉल इमरजेंसी सर्विसेज विकल्प में जाकर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर या अपने परिवार के किसी सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति का मोबाइल नंबर जोड़ना है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए शेयर इन्फो विद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और रिकॉर्ड इमरजेंसी वीडियो जैसे विकल्प भी आप ऑन कर सकते हैं। इससे ज़रूरत पड़ने पर आपकी लोकेशन, ज़रूरी जानकारी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित तरीके से साझा हो सकती है। किसी भी संकट की स्थिति में इस फीचर का उपयोग करने के लिए फ़ोन के पावर और लॉक बटन को लगातार 5 बार दबाएं। इसके बाद फ़ोन अपने आप तय की गई इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिससे समय रहते आपको मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो है ना, ये आपके फ़ोन में एक बहुत अच्छा सा फीचर, आप इसको अवश्य प्रयोग में लाइए। और चलते चलते आप को एक और जानकारी दे दें जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीए फार्मा स्टूडेंट्स के लिए है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीए फार्मा 8वें सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जयू प्रशासन के अनुसार परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक MP ऑनलाइन पोर्टल पर 27 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से अपडेट करने होंगे। किसी भी परीक्षार्थी के अंक शेष नहीं रह जाएं, क्योंकि परीक्षार्थी के उपस्थित होने पर अंक और अनुपस्थित होने पर एब्सेंट अंकित करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा में अंक अपलोड नहीं हुए तो छात्र को संबंधित विषय में अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो बी फार्मा 8 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस संबंध में अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके मार्क्स अपलोड किए जा चुके हैं। आज के गुड मॉर्निंग ग्वालियर में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। सिंधी कार्यक्रम अब हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा।

सिंधियत जी सुरहाण ॿुधण वारे सभी रेडियो श्रोताउनि खे कविता चांदवानीअ जी सिक भरी नमस्कार। जय झूलेलाल दोस्तों। दोस्तों, सपना उहे कान्हनि जेके असां निंड में ॾिसूं, सपना उहे आहिनि जेके असांखे निंड न चढ़नि। दोस्तों, इहो पहाको आहे असांजे महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हिकु अहिड़ी शख़्सियत जिन्हनि असांजे युवाउनि जी ज़िंदगीअ में घणेई उदाहरण पेश कया। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम असांजे देश जा 11वां राष्ट्रपति हुया। हो सिर्फ़ हिकु राष्ट्रपति न हुया, बल्कि अद्भुत वैज्ञानिक बि हुया, जंहिंखे असां मिसाइल मैन जे नाले सां सुञाणींदा आहियूं। उन्हनि जो विज्ञान ऐं अंतरिक्ष जे क्षेत्र में अतुलनीय

योगदान हो, जंहिं करे उन्हनि खे देश जो सभिनि खां वॾो सम्मान भारत रत्न सम्मान ॾियो वियो। उन्हनि पंहिंजे जीवन जा 40 साल DRDO लाइ कमु कयो। दोस्तों, उन्हनि जो देश जे ॿारनि युवाउनि सां गहिरो लॻाव हो। उन्हनि जो सपनो हो त देश जा युवा हर क्षेत्र में अॻियां वधनि, सपना ॾिसनि ऐं उन्हनि सपननि खे पूरो करण लाइ महिनत करनि। उन्हनि असांखे इहो ई सेखारियो त जीवन में चाहे कहिड़ियूं बि परिस्थितियूं छो न हुजनि, अगरि असां पंहिंजे सपने खे पूरो करण जी ठाने था छॾियूं त उन्हनि खे पूरो करे ई दम वठूं। 22 जुलाई उन्हनि जी पुण्यतिथि आहे। अचो त उन्हनि जी पुण्यतिथीअ ते इहो ई संकल्प खणूं त उन्हनि जा जेके ॾेखारियल रस्ता आहिनि, असां उन्हनि रस्तनि ते हलंदासीं ऐं पंहिंजा सपना पूरा कंदासीं। उहा ई उन्हनि लाइ सची श्रद्धांजलि हूंदी। दोस्तो, इन खां पोइ ॿुधंदासीं ही सुहिणो गीत, सुंदर सारो ही देश। कला हजारी, कमला केसवानी ऐं ढोलल राही जन जी आवाज़ में लिखियल ऐं ॻायल ही सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

0: दोस्तों मीं जी मुंद पई हले, तेज बारिश पई पए, पर छा कनी असा यो सोचो आ त जेको मीं जो पानी आ केतरो बर्बाद तो बने। अगर असा इन के संभाले रखूं, इन के किथे स्टोर करे रखूं, त केतरा ही जिंदगी में कम असा जा आसान थी वेंदा। इन बाबत ही अज असा जी वार्ता है, बुधनासी वार्ताकार सुरभि ईसरानी जन के।
1: जय झूलेलाल दोस्तों, अड मां एक ढाढ़े ही जरूरी और फायदेमंद विषय से गलाइंदस, वर्षा जल संरक्षण। पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, जल ही जीवन आ, हे गाल असा सबनेन बुधी आ। पर सोचो अगर पानी खत्म थी वने, तो असा रोज पानी जो इस्तेमाल कंदा आयूं, पीण में, रोटी ठाण में, सनान में, सफाइयों में ए खेती में। पर असा होतरी ही जिम्मेदारी से पानी बचाए था सकूं। दोस्तों पानी ही जीवन आ, पानी बिना सब सूनो आ। जल माणुन जी पहरी जरूरत आ, सुबह उठण का वठी रात जो सुमण ताई माणु जल जो उपयोग करन ता। मिया जो पानी अज जे टाइम ते डाढ़ो उपयोगी आ, हिन कारण सा अज जी सरकार माणुन के डाढ़ो जागरूक करे थी। इन करे चवणी आ त बूंद बूंद मां सागर ठहंदो आ। भारत में हर साल खोड़ बारिश थींदी आ, पर तड़ी भी ढाढ़ी जगहन ते पानी जी भारी कमी थींदी आ। अॼु भी गांव जा माण्हू पाणी जे लाइ ॾाढो पंद कर हली करे वेंदा आहिनि। अॼु पाण ॾिसूं था नदियूं सुकी थी वञनि, तलाउ ख़तम था थी वञनि ऐं बोरवेल बि सुकी था वञनि। हिन जो छा कारणु आहे? छो की असां बारिश जो पाणी नथा बचायूं। असां सभिनी शुरूआति खां इहो ॿुधियो आहे त पाणी ई हयात आहे, पाणी ई ज़िंदगी आहे। दोस्तो इहो अखर असां किताबुनि में बि पढ़ियो आहे, क्लासनि में बि सेखारियो वियो आहे ऐं भितनि ते बि लिखियलु ॾिठो। पर छा कॾहिं असां हिन ॻाल्हि खे दिलि सां सम्झो? अॼुकल्ह मोबाइल चार्ज करण लाइ असां हर जॻह चार्जर ॻोल्हींदा आहियूं। उहो ॾींहुं परे कोन्हे जॾहिं असांखे पाणीअ जी हिकु बोतल लाइ लाइन में लॻणो पवंदो। बरसाति जो पाणी बचाइण जो मतिलबु छा आहे? जेको पाणी वरसे थो हुन पाणीअ खे जमा करणु ऐं ज़रूरत जे समय ते इस्तेमालु करणु। हिन जा ॿ मुख्य तरीक़ा आहिनि। पहिरों बरसाति जे पाणी खे सिधो ज़मीन में विझो, जंहिंसां ज़मीन जो पाणी वधंदो। ॿियो बरसाति जे पाणी खे टंकी या गड्ढे में जमा करे पोइ इस्तेमालु कयूं। दोस्तो हाणे असां ॾिसंदासीं बरसाति जे पाणीअ खे बचाइण जा छा छा फ़ाइदा आहिनि। भूजल जो स्तर वधंदो, जंहिंसां बोरवेल ऐं कुअनि में पाणी भरिजी वेंदो। किसाननि खे खेतीअ लाइ पाणी मिली वेंदो आहे। घरनि में पीअण लाइ, साफ़ सफ़ाई लाइ ऐं वणनि में विझण लाइ कमु ईंदो। रस्तनि ते पाणी न भरिजंदो ऐं बाढ़ जो जोखिम घटिजी वेंदो। टैंकर ऐं नगर पालिका ते निर्भर न रहंदासीं। हाणे पाण सम्झी विया आहियूं कि जल संरक्षण छा थींदो आहे। हाणे असां ॾिसंदासीं पाणी बचाइण जा आसान तरीक़ा। छत जो पाणी जमा करणु, जेके अंग्रेज़ीअ में चवंदा आहियूं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। जॾहिं बरसाति थींदी आहे त असांजे घर जी छत में ॾाढो पाणी किरंदो आहे। हिन पाणीअ खे पाइप सां टंकी, गड्ढे या हौज में जमा करे था सघूं। हे पाणी बागवानी, घर जी सफ़ाई, लटा धोइण ऐं शौचालय में इस्तेमालु थींदो। हे सिस्टम लॻाए करे असां सालनि लाइ बेफ़िक्र थी था सघूं। हिन जो ख़र्च बि घटि हूंदो आहे। ॿिए नंबर ते ईंदो वण लॻाइणु। वण मिटीअ खे बधी रखंदा आहिनि, जंहिं करे पाणी मिटीअ में समाइजी थो वञे। जॾहिं वण वधीक हूंदा त बरसाति जो पाणी रिसी रिसी करे भूजल खे वधाईंदो। दोस्तो हर माण्हू अगरि साल में हिकु वण बि लॻाए त ॾाढो फ़र्क़ु पइजी वेंदो। वण लॻाइणु हिकु नंढो कमु आहे, पर हिन जो असर ॾाढो वॾो आहे। टियों तरीक़ो आहे सोकता गड्ढो ठाहिणु। हे अहिड़ो गड्ढो हूंदो आहे जेको बरसाति जे पाणी खे सोकण लाइ ठाहियो वेंदो आहे। हिन में कंकड़, कोयलो ऐं रेत विझिबी आहे। पाणी धीरे धीरे धरतीअ में समाइजी वेंदो। हिन खे असां घर जे अंगण में या पुठे पासे बि ठाराए था सघूं। चौथो तरीक़ो आहे घर जे कमनि में पाणीअ जो समझदारीअ सां इस्तेमालु करणु। बुश कंदे वक़्तु नल खे बंदि रखो, छो जो 5 मिंट नल चालू रहण सां 15 सां 20 लीटर पाणी बर्बादु थींदो आहे। बासण मलंदे वक़्तु सॼा बासण इकठा करे मलियो। हर बासण खे अलॻि मले पाणी न विञायूं। लटा वॉशिंग मशीन में तॾहिं धो जॾहिं मशीन भरिजी वञे। गाॾियुनि खे पाइप सां न धोई बाल्टी कपिड़े सां धोइजे। पौधनि खे सुबुह शाम पाणी ॾियो, जंहिंसां पाणी जल्दी सुके न। टॉयलेट में हर दफ़े फ्लश दॿाइण सां अठनि सां ॾह लीटर पाणी जान थींदो।

0: थींदो आहे। पाणी बचाइण लाइ तव्हां डुअल फ्लश सिस्टम लॻाए सघो था। घर में कंहिं बि नल में लीकेज आहे, हुनखे जल्द ठीकु कराइजे। पौधनि में पाणी ॾींदे वक़्तु ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी अपनाइजे। कपिड़नि ऐं बासणनि में इस्तेमालु थियण वारो पाणी वरी सां पौधनि में इस्तेमालु कजे। अक्सर माण्हू पाणी जी बॉटलियूं पी करे अधु फिटी कंदा आहिनि, हिन आदत खे मटणु ॾाढो ज़रूरी आहे। काथे ॿाहिरि वञो था त घर सां पंहिंजो पाणी खणी वञो। आसे पासे जे माण्हुनि खे ऐं मित्रनि माइटनि खे पाणी बचाइण लाइ जागरूक कजे। दोस्तो, स्मार्ट वॉटर मीटर लॻारायो जो पाणीअ जी खपत चेक करे। असां पंहिंजे मोबाइल में अलार्म या रिमाइंडर लॻाए था सघूं, जंहिंसां असां वक़्त ते मीटर बंदि करे पाणी जी खे बर्बादु थियण सां बचाए सघंदासीं। दोस्तो, पाणी बचाइण खे वॾो कमु कोन्हे, बसि थोरो ध्यानु, थोरी समुझ ऐं थोरो फ़र्ज़। जे हर घर, हर स्कूल, दुकान ऐं गांव पाणी बचाइण जा हे नंढा नंढा तरीक़ा अपनाए वठनि, त असांजी अचण वारी पीढ़ी खे पाणीअ जी कमी न थींदी। तव्हां सभई हिन ॻाल्हि खे सम्झो, अॼु अगरि पाणी न बचायोसीं त असांजा ॿार पाणी वठी करे पीअंदा। अञा ताईं असां सम्झियोसीं कि बरसाति जो पाणी बचाइण छा आहे, इन जा छा छा फ़ाइदा आहिनि ऐं असां पंहिंजे घर, मुहले ऐं समाज में कीअं लागू करे था सघूं। पर असली सवाल इहो आहे कि छा अॼु खां पोइ बि असां कुझु मटिजंदासीं या वरी हिन ई खे बि हिकु भाषण सम्झी भुलिजी वेंदासीं। अचण वारो भारत कीअं हूंदो, इहो असांजे अॼु जे फ़ैसिले ते टिकियलु आहे। जेकरे असां अॼु पाणी न बचायोसीं, बूंद बूंद जी क़दुरु कोन कईसीं, त सुभाणे असांजी पीढ़ी पाणीअ खे सोन जे अघ में ख़रीद कंदियूं। तव्हां सोचियो, असां तरक़ी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पर अगरि नलनि में पाणी न हूंदो त स्कूल कीअं हलंदा? अगरि खेतनि में सिचाई न थींदी त अन किथां ईंदो? अगरि ॿार बच्चा किनो पाणी पीअंदा, बीमार थींदा, त छा इहा तरक़ी आहे? दोस्तो, असांखे हाणे इंतज़ारु न करणु खपे। हर घर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुजणु खपे। हर स्कूल में पाणी बचाइण जो सबक हुजे। हर कॉलोनीअ में पाणी बचाइण जो जी योजना हुजे। अॼु असां पाण सां पुछियूं, छा मां पाणी जी बूंद बचाई आहे? छा मां ॿियनि खे पाणीअ जो क़दुरु ॿुधायो आहे? हिकिड़ी नंढी कोशिश वॾो बदिलाउ करे सघे थी। बसि हिकु बाल्टी पाणी रोज़ु बचायूं, हिकु वणु लॻायूं, इहा ई बदिलाउ जी शुरूआति थींदी। अचो त अॼु असां संकल्प कयूं कि बरसाति जो पाणी बचाईंदासीं ऐं हिकु हिकु बूंद जी क़दुरु कंदासीं ऐं असांजी अचण वारी पीढ़ियुनि खे बि पाणी जी चिंता खां बचाईंदासीं। आख़िरीअ में मां सिर्फ़ु इहो ई चवंदसि, दोस्तो, जेकर ज़िंदगी बचाइणी आहे त जल बचाइणो ज़रूरी आहे। अचण जे वक़्त में पाणी जी क़ीमत सम्झण वारो माण्हू ई अकलमंद हूंदो। असांखे हे ॻाल्हि सम्झणी पवंदी कि पाणी बचाइण कोई विकल्प न आहे, हे असांजी मजबूरी ठही वई आहे। अगरि अॼु बि असां जागरूक न थींदासीं त असां हिकु हिकु बूंद लाइ विणंदासीं। अॼु जे असां वर्षा जल खे समझदारीअ सां न संभाले रखंदासीं त सुभाणे वर्षा असांखां रूसी वेंदी। हाणे हिकु सुकियल धरती ते कोई बि ख़्वाबु न पलंदा, न हरियाली, न ख़ुशियाली। दोस्तो, अचो अॼु असां हिकिड़ी नई सोच सां ऐं नए संकल्प सां अॻिते वधूं। पाणी बचायूं, ज़िंदगी बचायूं। धन्यवाद आकाशवाणी, वरी मिलंदासीं हिकु नए विषय सां गॾु। जय झूलेलाल।
1: दोस्तो, हर तरफ़ झूलेलाल साईं जी जयकार आहे। चालीहो पियो हले झूलण साईं जो, त अचो असां ॿुधंदासीं झूलण साईं जो हिकु ई सुहिणो गीत, कलंगीअ वारा लाल, मोहम्मद रफ़ी ऐं राम पंजवाणी जंहिंजो लिखियलु ॻायल ई सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तों, हेपेटाइटिस बी, शायद असां इहो नालो ॿुधो हूंदो, पर असांखे ख़बर कान्हे त ही केतिरो ई ख़तरनाक वायरस आहे। दोस्तों, वायरल हेपेटाइटिस जी सुजाॻीअ लाइ ई हर साल 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हिन बीमारीअ सां लीवर में सूजन थींदी आहे ऐं जंहिंसां कैंसर बि थी सघंदी आहे। दोस्तों, हीअ एतिरी ख़तरनाक बीमारी आहे, हिन सां हर 30 सेकंड में हिकु माण्हूअ जी मौत थींदी आहे। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक बलमर्ग हेपेटाइटिस बी वायरस जी खोज करण खां पोइ ऐं उन वायरस जे इलाज लाइ उन जी टेस्ट ऐं वैक्सीन जो विकास कयो। डॉक्टर बलमर्ग जी इन खोज ऐं सम्मान में ही हर साल उन्हनि जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते 28 जुलाई खे विश्व हेपेटाइटिस दिवस मल्हायो वेंदो आहे। 2008 खां वठी हिन ॾींहं खे मल्हाइण जी शुरूआत थी। दोस्तो, कारगिल विजय दिवस हर साल देश में 26 जुलाई मल्हायो वेंदो आहे। दोस्तो, छा तव्हांखे ख़बर आहे त कारगिल युद्ध दुनिया जी

सभिनि खां वॾी पहाड़ी युद्ध क्षेत्र मां हिकु आहे। असांजे जेके जाबाज हुया उन्हनि माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर में 18,000 फिट जी खड़ी चढ़ाई चढ़ी करे दुश्मन खे धूल चटाई हुई ऐं देश खे 26 जुलाई 1999 में ही ऐतिहासिक जीत ॾियारी। ही युद्ध लॻभॻि 60 ॾींहनि ताईं हलियो। भारतीय सेना हिन मिशन खे नालो ॾिनो ऑपरेशन विजय। हिन युद्ध में 527 जवान असांजा शहीद थी विया ऐं 1300 खां वधीक जवान घायल थी विया। दोस्तो, ही युद्ध हिकु ख़तरनाक जंग हुई जंहिंमें दुश्मन 18,000 फिट मथे परकनि में लिखी वेठा हुया ऐं हेठि असांजे जवाननि जे मथां गोलियूं पई बरसनि। बर्फ़ पई किरे पर असांजा जवाननि जा हौसला त हिमालय खां वॾा हुया ऐं आख़िरकार 60 ॾींहनि जी जदोजहद ऐं युद्ध जंग खां पोइ असांजे तमामु शहीदनि जी क़ुर्बानीनि खां पोइ देश में हिन युद्ध खे विजय मिली ऐं तॾहिं खां वठी 26 जुलाईअ खे कारगिल विजय दिवस मल्हायो वेंदो आहे। दोस्तो, अचो असां पंहिंजी शहीदनि जी यादि में ॿुधूं था ही गीत। पंहिंजे वतन सां कला हजारी जंहिंजो कमला केसवानी जंहिंजो ही सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तो हिन सुहिणे गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नई ख़ुशी हिकु नई ख़बर सां। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल, सभ जो भलो।

0: सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपकी।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, अब सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर शरद बाघेला। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वास्थ्य सुविधाओं की। राज्य सरकार ने जावद सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों और सिंगोली के अस्पताल को 50 बिस्तरों का बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और नई स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नीमच में नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत साइकिल रैली से हुई। इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और अच्छी गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 30 जुलाई तक जिले भर में चलेगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिले में एक फैक्ट्री में करीब 200 कर्मचारियों ने नशा न करने की शपथ ली। कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का हिस्सा है। जिले में कम बारिश से किसान चिंतित हैं। अच्छी बारिश की कामना के लिए ग्रामीणों ने घास बावजी धाम पर पूजा और यज्ञ किया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। लोगों ने अच्छी फसल और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार कई परिवारों ने खुले स्थानों पर भोजन भी किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और गाँव के लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं। आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानी वेणीराम पाटीदार का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने गॉड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीमच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के स्वागत में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शहर देर रात तक भक्ति के रंग में डूबा रहा। स्वामी कैलाशानंद गिरी इस विशेष विमान से नीमच पहुंचे। उनके सम्मान में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। जिले में रेडक्रॉस भवन में निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर लगाया गया। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की आंखों की जाँच की गई। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ, चश्मे और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। नीमच जिले में फूलपुरा गांव में किसान प्रकाश खुआर दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई। इससे खेती की लागत घटी और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। अब वे जैविक खाद खुद तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे फसल की गुणवत्ता भी सुधरी है। आसपास के किसान भी अब इस खेती के तरीके में रुचि दिखा रहे हैं। फादर डे पर जीरन पुलिस ने एक बुजुर्ग पिता को उनके घर वापस दिलाने में मदद की। बेटे और बहू से विवाद के बाद बुजुर्ग लंबे समय तक आश्रमों में रह रहे थे। गांव लौटने पर भी उन्हें घर में नहीं रहने दिया गया। पुलिस के समझाने के बाद परिवार में सुलह कराई गई और बेटे ने अपनी गलती मानी। इसके बाद बुजुर्ग को सम्मान के साथ उनके घर में वापस रहने की व्यवस्था कराई गई। जावद के अठाना और डिकेन में मुहर्रम श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया। इस दौरान मजलिस और मातम का आयोजन हुआ। नीमच में अफीम नीति 2026-27 को लेकर किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में किसानों से 50 से ज्यादा सुझाव लिए गए। इन्हें अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नई नीति को किसान हितैषी और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के सुझाव नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीमच, मंदसौर और रतलाम में जब्त किए गए करीब 115 टन मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इनकी कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई। नशीले पदार्थों को सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में नष्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। जिले की पुलिस ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया है। जिले के 22 दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा मित्र तैनात किए जाएंगे। उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका मकसद हादसे के बाद घायल लोगों को समय पर मदद पहुंचाना है। नीमच नगर पालिका ने शहर को हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाया है। जून महीने में शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 80,000 पौधे लगाए गए। अभियान की शुरुआत पर्यावरण दिवस पर हुई थी। इसके तहत पीपल, नीम, जामुन और आम जैसे पौधे लगाए गए। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नीमच जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था दिनेश प्रजापति का और वाचन किया था शरद बाघेला ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब में शब्बीर कुमार का गाया ये गीत, जिसके लिए संगीत दिया था राहुल देव वर्मन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया, गौरैया चौक अंबाला से संदीप हगोड़िया और रागेश हगोड़िया, बक्सर से राज एस डी वली अंसारी। ये फरमाइश हमें मिली थी ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम की। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, बिहार से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म

शोर में लता मंगेशकर का गाया ये गीत, आइए आपको सुनवाती हैं लता मंगेशकर मुकेश और साथियों के स्वर में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
1: मेरी गुड़िया की ना। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या?
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
6: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
6: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए लेते हैं अपने कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। ये फरमाइश हमें मिली है अम्भई तहसील सिल्लौर जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोटके वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोटके वैष्णवी घोटके गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके की। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हम सफ़र में लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, अस्मा नाज अंसारी और प्रमिला जाटव, जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है बठिंडा पंजाब से करणवीर हाउस से भुच्चो कैंचिया, परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू एकम, दमन और अभिजोत की। और हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया में शारदा सिन्हा का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, आप भी फरमाइशी गीत हमें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आप अपने फरमाइशी गीत किस तरीके से सुन सकते हैं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं अपने फ़ोन नंबर। सुनिएगा ध्यान से।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
0: और श्रोताओ, अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म राजपूत से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव, कोरिया से डोनट पावो। और ये फरमाइश हमें मिली है संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। ये फरमाइश लिख रहे हैं गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतिशा संधू और मैक्स। अपने इन श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजपूत में मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत में मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया गीत। अब जो फरमाइश हमें भेजी है, ये फरमाइश हमें मिली है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने। और इन्होंने जो गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है, वो मेरा भी बड़ा पसंदीदा गीत है। ये गीत है फिल्म रतन से। हालांकि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपने जो स्वर लिखा है वो जोहरा बाई की आवाज़ इस गीत में नहीं है। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अमीर बाई कर्नाटकी और श्याम कुमार ने। वर्ष 1944 की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म रतन का ये एक अत्यंत लोकप्रिय गीत है और स्वर्णलता और करण दीवान ने इसमें एक्टिंग की थी। इस गीत में वो नज़र आते हैं, नौशाद के बड़े ही खूबसूरत बोल और संगीत डीएन मधुक का। इसके साथ ही हम अपने कुछ और श्रोताओं के नाम भी इस गीत में लेना चाहेंगे जो हमारी फरमाइश पर कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे, मायरा सुरोशे। और ये हैं तहसील रोड गंज डुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी, हमाद जमील। हम अपने इन श्रोताओं को भी ये गीत समर्पित करते हैं।

और श्रोताओं, ये सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाडे, वकील वाल्मीक धाडे, नीनाजी धाडे और स्वप्निल धाडे। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। हमारे इन श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं फिल्म आदमी में लता मंगेशकर का गाया ये गीत, शकील बदायूनी के बोल और संगीत नौशाद का।

और अब आइए आपको सुनवाते हैं आज के इस कार्यक्रम का यह अगला और अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बाजी से। आवाज़ गीता दत्त की, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत और अर्जुन गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह।

फिल्म बाजी में गीता दत्त और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:53 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर और उसके ठीक बाद हमारा अति महत्वपूर्ण प्रसारण जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम पिछले महीने दो चरणों में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगातें देंगे। वे संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही करीब 193 करोड़ रुपये की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। कृपया हमारे इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
3: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
4: महात्मा गांधी का कहना है,
5: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
6: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड

वन नेशन वन सैल्यूट, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था।
अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए।
गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपये से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा

यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है

हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व

0: का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृङ्खलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपि तु नूतन सन्ततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। निजी श्रोताओं प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए हम सुनते हैं पहला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर।

ये बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और इसे संगीत में बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहता आप सभी ने छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहता देवास से नंदिनी तिवारी ने और रानू गुप्ता ने सागर से। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने इसी गीत को सुनना चाहता। चलिए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

बारिश के मौसम को और सुहावना बनाने वाला ये गीत हमने लिया था फिल्म लम्हे से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की। ये गीत रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन था शिवहरी का। इस खूबसूरत से गीत को सुनना चाहा था ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे ने। इसी गीत को पसंद किया था औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया ने। तो श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं अपनी पसंद पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये खूबसूरत नगमे। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर की बेहद खूबसूरत आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत। ये गीत लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को आप सभी ने पसंद किया था। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम, प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बलोत से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप। इसी गीत को पसंद किया था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषि का साथी रॉबिन राणा ने। तो आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत हम लेते हैं फिल्म मोहरा से, जिसमें आवाज़ है अलका याग्निक की।

इस गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया ने। इसी गीत को सुनना चाहे मेंढकी रोड देवास से नागू सिंह मावत, राजकुमार मावत, अभिषेक मावत और राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब समय है एक अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारिका 11वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 11वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि अवंती से निकलकर वृकवन पैठार गांव प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर गांव के निकट के एक गांव पहुंचते हैं। उनकी पल पल रक्षा करने वाले जोगी ने परम गुरु बाबा गोरखनाथ के जन्म की पावन कथा सुनाई थी। अब आगे
2: उमड़ते घुमड़ते जल प्रवाह से आप्लावित वर्षा नद के किनारे प्रतीक्षा करते हुए राजा भर्तृहरि और ओघड़ जोगी पानी कब उतरे और कब पहुंच जाए नदी के उस पार। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, किंतु पानी उतरने के कोई आसार नहीं।
3: भर्तृहरि, अब तो संध्या होने को है और प्रतीत होता है कि रात्रि विश्राम के आश्रय की खोज कर लेनी चाहिए। गरक, यहाँ तो कोई वृक्ष भी नहीं है।
4: हाँ, और इस विस्तृत पार वाली नदी के पार उतरने का कोई साधन भी नहीं है महाराज। अरे हाँ, एक नाव तो तट पर है, पर केवट कहीं नहीं दिखाई देता।
3: खोजने पर मिल भी सकता है राजा, मैं आसपास देखता हूँ। तुम्हें रात्रि आहार भी चाहिए, तुम यहीं रहना।
4: आप किधर जा रहे हैं महाराज?
3: उस तरफ, मुझे आभास हो रहा है कि वहां कोई मिलेगा। तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अरे दोनों मिलकर खोजें।

0: मैंने कहा था ना भर्तरी, मुझे आभास हो रहा था कि निकट ही कहीं आश्रय भी मिलेगा और भोजन भी। वो वहां देख, एक झोपड़ी दिख रही है।
1: त्रिकालदर्शी हैं आप महाराज?
0: ना ना राजा, जो दिख रहा है वो गुरु की इच्छा है। मैं साधन भर हूं। कोई है? कोई है? अलख अलख निरंजन।

0: आज्ञा दे महाराज, क्या सेवा करूं? जल भी तो नहीं पिला सकते आपको। महाराज, हम सुपच जाति के लोग हैं, जूठन पर जीते हैं, हम जूठन खाने वाले हैं।
1: ला, वही दे दे, दे दे माई। अरे हम भी तो जाने कि जूठन का स्वाद कैसा होता है।
0: ना ना देवता, पातक लगेगा।
1: तुझे जोगी की भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा ला ला, इस खप्पर में अपनी जाति की भिक्षा डाल दे। अपनी जाति को आज और अभी त्याग दे। मेरे साथ बोल, बोल माई, अलग अलग गोरख गोरख।
2: भ्रातरि को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। स्त्री के दोनों बालक कुत्ते के साथ निकट आ पहुंचे हैं और वो कभी जोगी बाबा और कभी भूमि पर मस्तक रगड़ती अपनी माँ को देख रहे हैं। वो विनीत भाव में कहे जा रही है,
0: जाति तो देह के साथ ही छूटती है बाबा, कर्म का भी लेख है यह, जो जन्म के साथ आता है और मरण के साथ ही मिटता है।
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। जाति और जन्म अलग अलग बातें। आकाश से टपकने वाली बूंद निर्मल होती है माई, कीचड़ तो बस इस संसार में है जो उसे आत्मसात कर लेता है। मेरी जाति छूट गई तो फिर तेरी कैसी बनी रहेगी? अरे गुरु का नाम पारस है, पारस लोहा भी छूकर सोना बन जाता है। हम सब मानस जात है, कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। वैसी ये आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर। अब देर न कर माई, ला इस खप्पर में पानी भर दे, मैं तेरे पूरे परिवार की जात पी लेता हूं। जैसे किसी ने समुद्र को पी लिया था वैसे ही। ला ला माई ला।
2: स्त्री अपने आप से लड़ती हुई सी झोपड़ी में गई और जल के संग दो रोटियां ले आती है।
0: अभी बस इतना ही है महाराज, दो रोटियां बच्चों के लिए बचाकर रखी थी।
1: आनंद है, ओम ओम परमानंद है माई। एक रोटी बच्चे के लिए रख। ले भर्तरी, ये आधी रोटी तू भी खा ले। घटे पिंड निरंतर व्यापे, श्री शंभु यति गुरु गोरखनाथ निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप। बोलिए, हो जाति भस्म, जाति भस्म हो, जाति भस्म हो, अलग अलग गोरख गोरख।
2: जोगी जोर से चिंघाड़ता है, श्रृंगी मुंह से लगाकर लंबी करू मारता है। भर्तरी को लगा जैसे धरती एक बार पूरी घूम गई है। ओघड़ ने रोटी के चार टुकड़े किए, एक श्वानों को, दूसरा पास खेलते हुए बच्चों को और एक भर्तरी को देकर एक हिस्सा स्वयं लिया और भर्तरी से कहा,
1: राजा इसे खा ले, इससे ऋतुओं के कुप्रभाव से तेरी रक्षा हो जाएगी। और कह अलख निरंजन,
3: अलख निरंजन।

0: तृप्त हुए माता, तेरे और तेरे परिवार का सुख श्री बढ़े। हाँ, अब ये बता कि इस नदिया के पार कैसे जाना होगा, वो उस नाव का केवट कहाँ मिलेगा?
1: महाराज, मेरा पति जब आएगा तब आपको नदी के पार ले जाएगा, आता ही होगा। तब तक आप इस कदम की छाह तले विश्राम करें, मैं चटाई बिछाए देती हूँ, मैं गाय भी दोहलाती हूँ, गुनगुना दूध पी लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी महाराज।
2: लगता है ये रात भी आज यहीं बीतेगी।
0: अरे क्या अंतर पड़ता है, इस पार बीते या उस पार, हाँ रात को तो बीतना ही है। राजन, दूर वो

0: वहां परछाई देख रहे हो?
1: संभवतः उस स्त्री का पति है महाराज, मध्य के प्रभाव में लगता है। देखो उसके पांव डगमगा रहे हैं। हाँ, इधर आया ही नहीं, झोपड़ी की ओर मुड़ गया।
2: महाराज यह दूध ले लें, मेरा पति तो अपने संग जूठन ही लेकर आया है, सो आपके योग्य नहीं महाराज, हम तो जूठन पर ही आश्रित हैं, इसलिए घर में आटा भी नहीं रखते, अन्यथा मैं रोटियां ही बना देती।
0: सब अच्छा है, उचित है माई, अरे हम संतुष्ट हैं, है ना भरथरी? तुम्हारा ये गोरस अमृत तुल्य है। तू कुछ सोच रहा है भरतरी? कहीं उज्जैनी तो याद नहीं आ रही है तुझे?

0: गोरख देखो यहाँ घर में आटा तक नहीं और वहां किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। प्रचुर धन, प्रचुर धान्य, शक्ति, वैभव, विलास, दूध और मदिरा पनालों में बहती है। सहस्त्रों भवनों और आलयों में व्यंजन इतने प्रकार के कि श्रीमंतों के स्वान इन्हें सूंघकर भी हट जाते हैं। लगता है कि पार पहुंचना अब संभव नहीं है।
1: लज्जित हूं महाराज, मेरा पति मद के उन्माद में होने के कारण आपके सामने नहीं पड़ रहा है। फोर तक जब मद का प्रभाव उतर जाएगा तभी वह नाव लेकर जा पाएगा।
0: साध्वी चिंता न कर, अरे आज की रात कदम की छाव में ही हमारे बिताने का योग है। तू जा भोजन और विश्राम कर, हमें कुछ नहीं चाहिए माई। क्यों भरथरी?
2: जी जोगी,

0: या जागता है भर्तरी?
1: जाग रहा हूँ महाराज।
0: तो गुरु का ध्यान लगा, गुरु पर विश्वास कर। मैं और तू कठिन वन पर्वतों से होकर सुरक्षित निकल आए हैं। न तो सिंह वृक या व्याघ्र ने खाया और न ही हमें अजगर ने निगला। प्रेतपुरी से बचाया है तू, इसलिए क्योंकि गुरु की रक्षा में था तू। गुरु की रक्षा में दुखों का उपचार संसार के बीच रहकर ही हो सकता है। लगता इसीलिए गुरु गोरखनाथ संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था, देह को साधो, मन को साधो, विचार को साधो। मन, वचन और वाणी की फाक जब कम होगी तभी तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जाग रहा है राजा भर्तरी?
1: हाँ महाराज।
0: ये भूमि जाग रही है, वो स्त्री जाग रही है जो अभी अभी हमें दूध पिला कर गई है। भैरव के ये वाहन जाग रहे हैं, जागृत और सचेत। किंतु तेरी उज्जैनी सो रही है, अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर सो रही है उज्जैनी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी स्त्री जाग रही है, सोई नहीं रानी पिंगला। तेरी चिंता में नहीं सोई, और हाँ वो भी जाग रही है जो हर पल प्रतिवक्त तेरे साथ है, स्थान स्थान पर तुझे गिरने से बचाती है, तेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है।
1: वो कौन जोगी महाराज?
0: तू उसे भूला नहीं है?
1: शची, शची, शची।
0: और वो भी जाग रही है भर्तरी।

0: जो तेरे काव्य पर मोहित है, वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है, जो जानती है कि तेरे काव्य में नैतिकता तो है किंतु सहजता का अभाव है। इसलिए भर्तरी यहां से चंद्रपुर केवल 2 दिन की यात्रा पर है। वहां पहुंचो राजा, तुम्हें अकेले जाना है।
1: और देव आप?
0: गुरुदेव, गुरु की इच्छा यही है। राजा भर्तरी, चंद्रपुर अब अधिक दूर नहीं है। भटक न जाओ तो मार्ग भी निरापद है। आगे के मार्ग में मैं नहीं होऊंगा। गुरु का संदेश मिला है कि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं। सुपच परिवार अब सो गया है और तुझे जागते रहना है। हाँ, मैं अब चला अलग।

और ओघड़ चल पड़ा। भृतहरि देखते रहे, ओघड़ नदी के किनारे पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर भृतहरि पर दृष्टिपात किया। भृतहरि ने उसकी आंखें देखी, इस फुलिंग की तरह चमकती हुई। ओघड़ अब छाया भर दृष्टिगोचर हो रहा था। उसने नदी में प्रवेश किया, भृतहरि की ओर अभय मुद्रा में हाथ उठाए। भृतहरि को लगा कि जोगी का अट्टहास हवाओं में गूंज गया है और विस्फरित भृतहरि ने देखा कि वह नदी के जल पर बहा चला जा रहा है। देखते देखते उस पार अदृश्य हो गया। देखते रहे अकेले खड़े राजा भृतहरि, आश्चर्य से स्तब्ध, मूक और हतप्रभ।

0: अकेला रह गया भर्तृहरि तू, अंततः अकेला। औघड़ भी अपनी राह चला गया, किंतु उसने कहा था कोई है जो मुझे स्थान स्थान पर गिरने से बचाती है, मेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है। शची, शची, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो, मेरे एकांत की साझीदार? औघड़ कह रहे थे कि तुम भी जाग रही हो, तुम्हारी अनिद्रा का कारण मैं ही हो सकता हूं शची, मैं चिर अतृप्त चिर संशयी। भाग कर चल तो पड़ा, लेकिन जानता नहीं कि कहां पहुंचना है। शची, शची, कुछ तो बताओ।
1: क्या बताऊं राजन?
0: शची, तुम मेरे साथ हो ना?
1: हाँ राजन।
0: तुम्हारा साथ ही मेरी तृप्ति है, मेरा निश्चय है शची।
1: जी।
0: ये अनुभव एकांगी नहीं, सापेक्ष अनुभव है।
1: तो
0: आज यहां से जिस सुपच दंपति का अतिथि हूं वो नितांत अकिंचन है, किंतु किसी महामहिम नरेश से अधिक सुखी। मैं तुमसे पूछता हूं शची कि ऐसा क्यों है, उनकी तृप्ति उन्होंने कहां से पाई शची?
1: मैं क्या बताऊं राजन, राजा तो आप हैं।
0: प्रिय, जाने कब मैं ये स्वीकार कर पाऊंगा कि पैठार की निर्धनता के बीच अपनत्व की निधि जो मैंने देखी, उसके सामने अवंती का वैभव कितना तुच्छ, कितना श्रीहीन है। किंतु पैठार और अवंती दोनों ही की स्मृति मुझे साथ साथ हो आती है, और इस महानाट्य का वो विष्कंभक औघड़ जोगी भी।

अभी अभी जो विज्ञान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए नदी ताल पर पांव पांव चलते उस पार चला गया है। क्या ये अविश्वसनीय दृश्य था? जोगी आया था गुरु के आदेश पर मेरी रक्षा करने और यहां लाकर छोड़ गया। आगे की राह मुझे स्वयं ही चलना है, पर चेतावनी दे गया है कि यदि भटका नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाऊंगा। त्रिकालदर्शी जोगी का आशय क्या था? 2 दिन का मार्ग है चंद्रपुर का।

0: अचानक कुत्तों के भौंकने का स्वर तेज हो जाता है, जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। सुपच नारी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है।
1: कौन है? कौन है? महाराज, आप सुरक्षित तो हैं?
2: हाँ देवी, संभवतः कोई मकर है, भटकते भटकते इधर आ गया है।
1: चिंता ना करें, आसपास जाल लगे हुए हैं महाराज, आप तक कोई हिंस्र पशु नहीं पहुंच पाएगा, रक्षा का पूरा प्रबंध है। अरे, चूंकि महाराज कहाँ हैं?
2: वे चले गए हैं देवी।
1: कहाँ? नाव और केवट के बिना कहाँ चले गए?
2: नदी पर चलते चलते, पता नहीं कहाँ।
1: नदी पर चलकर? सिद्ध पुरुष थे
3: वो तैरकर नहीं गए?
2: नहीं, कहते थे यहां तक ही वो मुझे रास्ता दिखाने आए थे, यहां से आगे मुझे अपना मार्ग स्वयं चुनना है।
3: महात्मा, चिंता न करें, भोर होते ही मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। रात थोड़ी सी बची है, तब तक आश्वस्त होकर विश्राम करें। हमारा ये श्वान युगल नील और मणि आपको सुरक्षा देगा। मेरे वीर सैनिक हैं, सुरक्षा में कभी चूक नहीं करते।
2: क्या नाम बताया? नील, मणि। मेरे वेगवान सुदर्शन और स्वामी भक्त अश्व का नाम भी यही था।
1: महाराज, कुछ कहा आपने?
2: हाँ देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस श्वान युगल को नीलमणि नाम क्यों दिया?
1: हमारे यह है ना, मदपान के पश्चात किसी नरेश से कम नहीं होते। उज्जैनी के विश्व विश्रुत नरेश भर्तहरि के विषय में कहीं सुन लिया था कि नीलमणि, उनके सर्वाधिक प्रिय अश्व का नाम नीलमणि है, सो जोश में आकर श्वान को नील और श्वानी को मणि संबोधन दे डाला।
2: अनुकरणीय नरेश।

0: जय महाकाल।
1: देवी, इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मुझे तो बस पार पहुंचाने की व्यवस्था भर कर दो।
2: महामना, आप हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। एक नया जीवन आपने हमें दिया है। अभी तक हम अपने आप को केवल पतित ही मानते रहे। एक ऐसा पशु जो मात्र इसलिए जीवित है कि वह मरना नहीं चाहता। जाने क्यों हम समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं। आपने तो हमारी जाति ही बदल दी, जैसे जन्म ही बदल गया, नया जन्म दिया। बस इतना मान और दे दें कि इस झोपड़ी के द्वार पर अन्न के कुछ दाने ग्रहण कर लें। ये उच्छिष्ट अन्न नहीं है, हमने बीज के साथ अपना स्वेद देकर उसे उत्पन्न किया है महाराज।
1: इस आतिथ्य के लिए मैं कृतज्ञ हूं देवी। मैं यदि अधिक समय और रुका तो संभवतः अपने पथ से दूर हो जाऊंगा, अतः अब आज्ञा दें। बंधु, मुझे उस पार पहुंचाने की कृपा करो।
2: महाराज, आधी घड़ी और ठहरे। महाराज,
3: गृहिणी ने पति को सचेत कर संकेत किया तो वह पुनः सांटी उठाकर आंच पर सिके भुट्टे पूर्ववत झाड़ने लगा।

ही देर में गृहिणी ने दाने सूपड़े से फटक कर साफ किए और अतिथि के गमछे से गांठ बांध दिए। भ्रातृहरि जब सुपच परिवार से विदा हुए तो गृहिणी और दोनों बच्चों की आंखों में आत्मीयता और कृतज्ञता के आंसू भर आए। डोंगी धीरे धीरे नदी की सतह पर आगे सरकती जा रही थी। भ्रातृहरि का कुछ जैसे बालू का तट छूटता सा जा रहा था, लेकिन आगे भी ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें बुला रहा था।

0: अब मुझे चंद्रपुर पहुंचना है।
1: भृतहरि का अवलक्ष्य था चंद्रपुर। उन्हें बताया गया कि वहां चारुमित्रा है, उनकी कविताओं की प्रशंसिका, जिसने वसंत को प्रेरित किया था कि वह उनके संस्कृत काव्य को लोक भाषा में प्रस्तुत करे। विद्वानों के लिए लिखा गया यह काव्य लोक हृदय द्वारा ग्रहण किए जाने की एक तरह से पुष्टि होगी, कसौटी होगी उस काव्य की संवेदना की, एक परीक्षा। भृतहरि को लगा कि चारुमित्रा अपने भवन के झरोकों में खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
2: अलख गोरख गोरख गुरु गोरख, बस यहीं तक तुम्हें पहुंचाने का आदेश गुरु ने दिया था। अब आगे मार्ग तुम्हारा है, यदि भटके नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा भर्तहरि, जाग रहे हो ना?
0: जाग रहा हूं जोगी महाराज। तो बंधु विदा, कभी अवसर मिला तो पुनः तुमसे आकर मिलूंगा।
3: ये हमारा सौभाग्य होगा देवता।

0: चार महीने पीछे छूट गई है अवंती। इस बीच नागर जीवन से कोई संपर्क नहीं रहा। चंद्रपुर के व्यापारियों का संपर्क निश्चय ही उज्जैनी से होगा, कुछ समाचार मिलेंगे। इस बीच वहां क्या घटा, शुभ अथवा अशुभ? शायद रानी पिंगला का कोई समाचार मिले। महामात्य पूर्ण रथ निश्चय ही अत्यधिक चिंतित होंगे। कुमार विक्रम की उद्दंडता अवश्य बढ़ गई होगी। राजनीतिक षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जा रहा होगा। राजदंड का जब भय ही ना रहे तो सर्वत्र अनियंत्रित स्वार्थ शीर्ष उठा लेते हैं, अनियंत्रित और अराजक प्रजा। भर्तृहरि, अवंती कातर है, वो तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें, तुम्हारी अवंती भर्तृहरि, तुम्हारी अवंती।
1: अलोक गोरख गोरख, राजा भले ही तुझे अटपटा लगी पर मैं कह ही देता हूं कि तेरी उज्जैनी सो रही है अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर। भर्तृहरि, तू भी सो गया क्या? जाग, क्या अभी शेष नहीं हुई है? यहां से 2 दिन के रास्ते पर है चंद्रपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारिका 11वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। आज कारगिल विजय दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली बार भारतीय महिला बन गई हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उनकी इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के हृदय में गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाता है, भारतीय सेना की गौरव गाथा का पर्व कारगिल विजय दिवस। बहनों, यह दिवस केवल एक तिथि नहीं है बल्कि यह भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट संकल्प, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन हमें उन अमर वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भारत माता का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। बहनों, सन 1999 में पाकिस्तान की सेना और उसके घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उनका देश श्रीनगर, लेह, राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली तब उन्होंने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मनों को खदेड़ने का संकल्प लिया। बहनों, कारगिल का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। हमारे सैनिकों को लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम अत्यंत ठंडा था, दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था और हर कदम पर मृत्यु का खतरा था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। इस युद्ध में हमारे अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम श्रद्धा पूर्वक उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। उनके साहस और बलिदान की गाथाएं सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। बहनों, जब भी कारगिल युद्ध का नाम लिया जाता है तब अनेक वीर योद्धाओं की याद आती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का वह अमर उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर भारतीय के मन में जोश भर देता है। उन्होंने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर विजय प्राप्त की और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी तथा अनेक अन्य वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। बहनों, इन वीरों ने हमें सिखाया

कि देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बहनों, भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य संकटों के समय भी सबसे पहले सहायता के लिए आगे आती है। कारगिल विजय दिवस हमें केवल वीरता की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें अनेक जीवन मूल्य भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस, अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा हमें सहज रूप में नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे हजारों सैनिकों का त्याग और बलिदान छिपा है। हमें अपने सैनिकों की तरह ईमानदार, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला नागरिक बनना चाहिए। देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर युद्ध लड़ने का नाम नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, संविधान का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना और देश के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। आज इस कारगिल दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे भारत का नाम विश्व भर में गौरवान्वित हो। यही हमारी वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

साथियों। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं टीकाकरण कराएं जीवन को खुशहाल बनाएं के विषय में। जी हाँ बहनों, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके बचाव के उपाय बताना तथा समय पर टीकाकरण और जांच के लिए प्रेरित करना है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बीमारियों से घिर जाएं तो जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए बीमारियों से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है टीकाकरण। बहनों, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करती है। यह वायरस के कारण होती है और इसके कई प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी एक गंभीर संक्रमण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। समय पर लगाया गया टीका व्यक्ति को इस बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त चढ़ाने तथा संक्रमित माँ से नवजात शिशु तक फैल सकता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों का टीकाकरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं अपनाना, स्वच्छता बनाए रखना और जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। बहनों, भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए निशुल्क टीके उपलब्ध कराता है। इन टीकों ने लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित बनाया है। इसलिए हमें न केवल स्वयं टीकाकरण करवाना चाहिए, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बहनों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो समय पर उपचार लेना चाहिए और उपलब्ध टीकों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यदि हम सभी जागरूक बने तो हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। बहनों, एक स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, युवा ऊर्जावान होंगे और बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। टीकाकरण अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं, स्वस्थ रहेगा हर

परिवार तभी बनेगा देश महान। हेपेटाइटिस को हराना है, जागरूकता का दीप जलाना है, टीकाकरण कराएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। बाघ है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पर्यटन है, पर्यटन है तो समृद्धि है के विषय में। बहनों, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं, बल्कि हमारी जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। बहनों, जब हम कहते हैं बाघ है तो प्रकृति है, तो इसका गहरा अर्थ है बाघ जंगल का सर्वोच्च शिकारी है। वह वन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखता है। यदि बाघ जंगल में सुरक्षित रहेगा तो हिरण, सांभर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी। इससे वनस्पतियों का संरक्षण होगा, जंगल हरे भरे रहेंगे और पूरा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा। इसलिए बाघ का अस्तित्व केवल एक जीव का अस्तित्व नहीं, बल्कि पूरे जंगल की जीवन शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति है तो पर्यटन है। बहनों, घने जंगल, स्वच्छ नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी और वन्य जीवों की विविधता ही किसी देश की प्राकृतिक पहचान बनते हैं। जब लोग जंगलों में बाघों को देखने आते हैं तो वे केवल एक वन्य जीव नहीं देखते, बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करते हैं। भारत के अनेक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य देश विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है और संरक्षण की भावना मजबूत होती है। पर्यटन है तो समृद्धि है। जी हाँ बहनों, पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास का भी एक सशक्त आधार है। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन, गाइड, फोटोग्राफी और अनेक छोटे बड़े व्यवसाय विकसित होते हैं। इससे गांव और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनता है। इससे बाघों का संरक्षण सीधे सीधे समृद्धि से जुड़ा हुआ है। बहनों, भारत विश्व के उन देशों में है जहाँ सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बाघों को और उनके जंगलों को सुरक्षित रख सकें। आज भी बाघों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का सिकुड़ना, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। यदि इन समस्याओं का समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां बाघों को केवल पुस्तकों और चित्रों में ही देख पाएंगी। इसलिए बहनों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। हमें पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार, वन विभाग, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक सभी के संयुक्त प्रयास से ही बाघों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे, बाघ बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तब हमारा देश समृद्ध बनेगा। इस विश्व बाघ दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, हरित और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन की सफलता में गुरु की भूमिका, गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

गुरु ही विष्णु हैं जो हमारे ज्ञान का पालन करते हैं और गुरु ही महेश हैं जो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरु को बार बार प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन

वास्तविक सफलता वह है जिसमें व्यक्ति ज्ञानवान, संस्कारी, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील और समाज के प्रति उत्तरदायी बने। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तब गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम असफल होते हैं तब गुरु हमें निराश होने से बचाते हैं और दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तब गुरु हमें विनम्र बने रहने का संदेश देते हैं। बहनों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य रहा है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में माता जीजाबाई और समर्थ रामदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को दिशा देने वाले गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानकर महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु हमारे व्यक्तित्व के निर्माता होते हैं। वे हमारे भीतर अनुशासन, समय का सदुपयोग, परिश्रम, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। वे हमें केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में सफल होने का साहस भी देते हैं। बहनों, गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। यदि हम गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि गुरु चाहे वे हमारे विद्यालय के शिक्षक हों, हमारे माता पिता हों या जीवन में हमें सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति हों, उनका सदैव सम्मान करेंगे। हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करेंगे।

0: बहनों, श्रावण मास का पावन महीना 30 तारीख से शुरू हो रहा है। यह महीना अपने साथ भक्ति, उत्साह और अनेक धार्मिक परंपराएं लेकर आता है। इस पवित्र मास में व्रत और फलाहार का विशेष महत्व होता है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्वादिष्ट और आसान फलाहारी व्यंजन, जो व्रत की शुद्धता के साथ साथ स्वाद का भी पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मखाना पनीर टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप भुने हुए दरदरे पिसे मखाने, 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। घी सेकने के लिए सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर टिक्की बना ले। तवे पर थोड़ा घी डालकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेक ले। दही या फलारी चटनी के साथ सर्व करें। तैयार है आपकी मखाना आलू टिक्की। अब बनाते हैं नारियल कद्दू की मलाईदार सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप कद्दू के टुकड़े, 1/2 कप नारियल का दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च, घी। घी में जीरा भूने, कद्दू डालकर पकाएं। जब कद्दू नर्म हो जाए तब नारियल का दूध डालें और 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। तैयार है स्वादिष्ट सब्जी। इसे आप समा के चावल या कूटू के आटे की पूड़ी के साथ गर्म गर्म खा सकते हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शायदा कुरैशी के गाए मल्हार गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायदा कुरेशी, रजनी अर्जेरिया और राजीव कुमार रावत के गाए मल्हार गीत। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में इकबाल हुसैन वंदनवाजी और साथियों की गाई कव्वाली। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: अंतराल का समय समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज यानी 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में देश इस महान दिन की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। तो आइए श्रोताओं, हम भी इस विजय को मनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद 23 मार्च 1931। फिल्म का ये गीत स्वर थे उदित नारायण, भूपेंद्र सिंह और वीर राजेंद्र के। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत था आनंद राज आनंद का। लीजिए अब कार्यक्रम में अगला गीत पेश है कारगिल विजय दिवस पर।

श्रोता, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म देश के दुश्मन से। स्वर है महेंद्र कपूर और साथियों की, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है सोनिक ओमी का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं तथा बावड़ियों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। अब भूजल पुनर्भरण के लिए बोरवेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तालाबों और अमृत सरोवरों को मिले नए जीवन पर कहा,
1: साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। हाल की बारिश से पारंपरिक मार्ग को हुए नुकसान के कारण आज जम्मू से अनंतनाग जिले के पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परम्परा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को नमन करता है जिनके असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को संभव बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री यादव अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुल 69 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में मानसून सक्रिय

0: ना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 4 इंच या इससे अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
2: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
2: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ

0: देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा

0: समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम।

0: मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को स्टूडियो में उपस्थित बच्चों और प्रीति दीदी की जय हिंद। साथ ही सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। हम जानते हैं हमेशा की तरह आज भी हमारे प्यारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि दीदी आज हमारे लिए क्या जानकारी देने वाली हैं। तो बच्चों, आज बात कारगिल विजय दिवस की। बच्चों, आज यानी 26 जुलाई को हम सब विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे जो बाल साथी ये नहीं जानते कि इसे क्यों मनाया जाता है, उन्हें बता दें कि जब पाकिस्तान ने सन 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल ज़िले की पर्वतीय चोटियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, तो भारत ने भी उनकी इस कोशिश को असफल करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी सीमा से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। और हमारी साहसी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय पर्वत सीमा से भागने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल की सभी चोटियों को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और एक बार फिर पर्वतों पर तिरंगा फहरा दिया। तब से 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को कारगिल विजय दिवस के बारे में पता चल गया होगा और वे भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे अगले क्रम आओ जाने की ओर, जिसमें आज हम एक और दिवस के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में, जिसे 28 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, तो हम सबको उसे संरक्षित करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग यदि किफ़ायत से नहीं किया गया तो उन्हें ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर वो समाप्त हो गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। सोचो बच्चों, अगर पीने का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम क्या पृथ्वी का हर प्राणी, पेड़ पौधे, इन सब के लिए पानी कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही प्रकृति की हर चीज़, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे जीवन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी भी तत्व की कमी हुई तो हमारा जीवन प्रभावित होगा। बच्चों, इसी बात के प्रति सबको जागरूक करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, केवल इस बात को कहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम प्रकृति की हर चीज़ को संरक्षित करें, उसे सुरक्षित करने का प्रयास करें। साथ ही सभी को इस बारे में जागरूक भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे इस प्रकृति संरक्षण दिवस पर ये संकल्प तो लेंगे ही, साथ ही साथ खुद इन बातों का पालन भी करेंगे और लोगों को चीज़ों के दुरुपयोग के प्रति सचेत भी करेंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे आज जुड़ रहे बच्चों के पास और उनसे जानते हैं कि आज वो हम सबके साथ क्या साझा करेंगे हमारे अगले क्रम बच्चों के मुख से में। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन साथी जुड़ रहा है, हम उनका नाम जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं और ये जानते हैं कि वो हमसे क्या साझा करने वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम आशी सैन है।
0: आशी, क्या लेकर आई हो आशी?
1: एक पोयम।
0: पोयम, क्या नाम है पोयम का?
1: मेरी भावना।
0: मेरी भावना, सुनाओ।
1: अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईश्वर भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन।

0: मैत्री भव जगत में मेरे सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा उसित रहे। दुजन क्रू कुमारगत पर छूम नहीं मुझको आए। सम्यक भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणीति हो जाए। गुरुजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतल घन में कभी मैं द्रोह ना मेरे और आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नीत दृष्टि ना दोषों पर जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आया जाए। लाखों वर्षों तक जियो या मित्र राज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पर दे पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रख कर रहे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द ही नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब योग वीर हृदय से देशोन्ती रथ कह रहे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे।
1: बहुत ही अच्छी कविता हमको आशी ने सुनाई है। अब और कौन क्या तैयार करके आया है?
2: हम एक गीत तैयार करके आए हैं।
1: पहले बेटा आप सब अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
3: आकांक्षा एकेवट।
4: श्रद्धा रैदास।
1: तो तीनों बच्चियां मिलकर एक गीत सुना रही हैं, सुनाओ।
5: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जानता हुदान। आज इंद्रनुष के बाढ़ में उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण ले। जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्व शक्तिमान है। मन की पुकार है ये भागवत का सार है। कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है वश नहीं किसी पे कोई वश नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।

0: बहुत ही अच्छा गीत इन्होंने हमें सुनाया। बेटा सब लोग एक बार फिर से अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
2: मेरा नाम है आकांक्षा केवट।
3: मेरा नाम है श्रद्धा रहदास।
0: अंशिका, आकांक्षा और श्रद्धा ने बहुत ही अच्छा भजन हमें सुनाया है। हमें लगता है कि हमारे श्रोता बच्चों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम अनन्या अहरवार है। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ।
0: अनन्या, हम सबके लिए भजन तैयार करके आइए, सुनाओ।

0: मधुर सुना दोता।
1: अनन्या ने बहुत ही सुंदर भजन हमें सुनाया है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है?
2: कविता।
1: कविता, पहले बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: परी अहिरवाल मेरा नाम है, मैं एक कविता लेके आई हूँ।
1: अब परी हम सबको कविता सुनाएगी, सुनाओ।
2: पेड़ हमें छाया देते हैं और यही देते हैं आम, इनसे हरियाली धरती पर, इनसे सारी चहल पहल, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, रंग बिरंगे फूल इन्हीं से।
1: बहुत ही अच्छी कविता थी, पेड़ों से जुड़ी हुई ये कविता थी। पेड़ हमें हरियाली तो देते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को सहेज कर रखना है, उन्हें काटना नहीं है और कटने से बचाना है और नए नए

0: रोपने हैं ताकि हम नए पेड़ों को तैयार कर सकें। अब आगे हमारे साथ और कौन जुड़ा हुआ है बेटा, आप अपना नाम बताओ।
1: मेरा नाम है अंशिका प्रजापति।
0: अंशिका क्या तैयार करके आई है?
1: कविता।
0: कविता सुनाओ।

0: बच्चे हैं।
1: भारत प्यारा देश हमारा, अभी प्रकृति की ऊपर कविता सुनी थी इससे पहले हमने, और अपने देश के प्रति। हमारा देश रंग बिरंगी चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा हमारा देश भारत देश है। और इसी तरीके से ये हमारे बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बच्चे। अब और हमारे साथ कौन है, क्या सुनाएगा?
2: मेरा नाम प्रियांशी चौधरी है, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। किनारे केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ थी। जहाज के यात्री और नाविक को बचाने के लिए नौका ले जाना जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थीं। फरीद ने पूछा, माँ क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकते हैं। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक के पिता नाव लेकर समुद्र में गए थे। एकमात्र उसका यह सहारा था, अगर इसे भी कुछ हो गया तो इसे ना भेजूं तो ना जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने डूबते हुए जहाज को बचा लिया। उन्हीं लोगों में उसका पिता था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बालक ने पूछा, पिता आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा कि नाव डूबा ले गई आपको। मैं डूबा नहीं था, मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचा लिया। आज यह जहाज ही डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया, मुझे तुम पर गर्व है। अपहरित की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया है। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की भी जान बच गई।
1: बहुत अच्छी कहानी हमें प्रियांशी ने सुनाई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय पढ़ने पर किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है हमारे किसी अपने को भी इसी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़े और समय मिलने पर उसे भी मदद मिल पाए। हाँ, तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम समीक्षा कुशवाहा, मैं आपके लिए भजन तैयार करके आई हूँ।
1: अच्छा, तो समीक्षा भजन लेके आई है, सुनाओ बेटा।
3: श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज।

0: कौशल चंद दशरथ नंदन।
1: बहुत सुंदर भजन अभी हमने समीक्षा से सुना। अब आगे और कौन क्या सुना रहा है? बेटा आप अपना नाम बताओ सबसे पहले।
2: मेरा नाम मुस्कान साहू है, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ।

0: वो सब एक हैं। चाहे हमारी भाषा अलग हो, बोली अलग हो, रंग रूप अलग हो, पहनावा अलग हो, पर हम सब आखिर में एक ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम साक्षी प्रजापति है। मैं कहानी बोल रही हूँ।
2: किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चक्कर देखा। मिर्च बहुत चरपरी थी, उसने मिर्च फेंक दी। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पुलट कर देखा, तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक पड़ी। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह तो बड़े काम की चीज है, इसके सामने जो भी आता है वह तो इसमें दिखाई देने लगता है। उसने थैले में काया गले में लटकाया और दर्पण को थैले में रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। रास्ते में उसे पेड़ पर एक मुर्गा बैठा हुआ मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है, आज तो इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो? भालू की बात सुनकर बंदर ने कहा, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या करना? भालू ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। बंदर बोला, अरे तुम जैसे को तो मैं अपने थैले में बंद कर कर रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहाँ पर एक शेर आ गया। शेर ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। भालू ने बताया कि यह बंदर तो अकड़ रहा है, बोलता है कि मेरे जैसे को तो थैले में बंद रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। वह बंदर को डांटने लगा और बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू को ही नहीं शेर को भी थैले में बंद है, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने दर्पण निकाल कर उसके सामने कर दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अपनी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहाँ से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा। अब उसे किसी का डर नहीं था।
0: बच्चों, अब वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने आसपास सफाई रखें, प्रकृति की सभी चीज़ों का संरक्षण करें, पानी बचाएं, पेड़ों को हरा भरा रखें, नए नए पौधे लगाएं, और सभी अपना भी ध्यान रखें और अपने घर के बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का, सबका ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभ भाव के साथ प्रीति दीदी को मुस्कान से इजाज़त दीजिए। सभी बच्चों की तरफ से और प्रीति दीदी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी जबलपुर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा है अशद भोपाली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत स्वर थे लता मंगेशकर के। गीत लिखा था असद भोपाली ने और स्वर थे संगीत था राम लक्ष्मण का। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। बारिश के चलते पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। और भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 5:02 पर आप सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। 5:33 पर फिल्म संगीत और 6:00 पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम और शाम 7:30 ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें आज विषय है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे। रात 8:00 सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की, इसमें विषय है पीएम श्री योजना। रात 9:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल, सुनिएगा आप इनका संतूर वादन। श्रोताओं, ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर अब ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5:00 इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच ये प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इकबाल हुसैन वंदन वाजी और साथियों की गायी कव्वाली। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए
1: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

चंद्रयान लिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यूज

0: Gen Z भी है, है also Gen Old, नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म सिलसिला का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है शिवहरी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। शब्द रचना है मजरू की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जब जब फूल खिले, आई श्रोताओं सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। स्वर है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले से, मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से चल रहे इस विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। एक पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाणा।

सिंधियत जी सुरहाण ॿुधण वारे सभी रेडियो श्रोताउनि खे कविता चांदवानीअ जी सिक वरी नमस्कार। जय झूलेलाल दोस्तों। दोस्तों, सपना उहे कान्हनि जेके असां निंड में ॾिसूं, सपना उहे आहिनि जेके असांखे निंड न चढ़नि। दोस्तों, इहो पहाको आहे असांजे महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हिकु अहिड़ी शख़्सियत जिन्हनि असांजे युवाउनि जी ज़िंदगीअ में घणेई उदाहरण पेश कया। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम असांजे देश जा 11वां राष्ट्रपति हुया। हो सिर्फ़ हिकु राष्ट्रपति न हुया, बल्कि अद्भुत वैज्ञानिक बि हुया, जंहिंखे असां मिसाइल मैन जे नाले सां सुञाणींदा आहियूं। उन्हनि जो विज्ञान ऐं अंतरिक्ष जे क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हो, जंहिं करे उन्हनि खे देश जो सभिनि खां वॾो सम्मान भारत रत्न सम्मान ॾियो वियो। उन्हनि पंहिंजे जीवन जा 40 साल DRDO लाइ कमु कयो। दोस्तों, उन्हनि जो देश जे ॿारनि युवाउनि सां गहिरो लॻाव हो। उन्हनि जो सपनो हो त देश जा युवा हर क्षेत्र में अॻियां वधनि, सपना ॾिसनि ऐं उन्हनि सपननि खे पूरो करण लाइ महिनत करनि। उन्हनि असांखे इहो ई सेखारियो त जीवन में चाहे कहिड़ियूं बि परिस्थितियूं छो न हुजनि, अगरि असां पंहिंजे सपने खे पूरो करण जी ठाने था छॾियूं त उन्हनि खे पूरो करे ई दम वठूं। 23 जुलाई उन्हनि जी पुण्यतिथि आहे। अचो त उन्हनि जी पुण्यतिथीअ ते इहो ई संकल्प खणूं त उन्हनि जा जेके ॾेखारियल रस्ता आहिनि, असां उन्हनि रस्तनि ते हलंदासीं ऐं पंहिंजा सपना पूरा कंदासीं। उहा ई उन्हनि लाइ सची श्रद्धांजलि हूंदी। दोस्तो, इन खां पोइ ॿुधंदासीं हीउ सुहिणो गीत, सुंदर सारो ही देश। कला हजारी, कमला केसवानी ऐं ढोलल राही जन जी आवाज़ में लिखियल ऐं ॻायल ही सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

0: दोस्तों मींहं जी मुंद पई हले, तेज बारिश पई पए, पर छा कनी असां इहो सोचो आ त जेको मींहं जो पाणी आ केतिरो बर्बाद थो वञे। अगरि असां इन खे संभाले रखूं, इन खे किथे स्टोर करे रखूं, त केतिरा ही ज़िंदगीअ में कम असांजा आसान थी वेंदा। इन बाबति ई अॼु असांजी वार्ता आहे ऐं ॿुधंदासीं वार्ताकार सुरभि ईसरानी जन खे।
1: जय झूलेलाल दोस्तों, अॼु मां हिकु ॾाढे ही ज़रूरी और फ़ाइदेमंद विषय ते ॻाल्हाईंदसि, वर्षा जल संरक्षण। पाणीअ जे बिना ज़िंदगी अधूरी आहे, जल ही जीवन आहे, हे ॻाल्हि असां सभिनीनि ॿुधी आहे। पर सोचियो, अगरि पाणी ख़तमु थी वञे त? असां रोज़ पाणी जो इस्तेमालु कंदा आहियूं, पीअण में, रोटी ठाहिण में, सनान में, सफ़ायुनि में ऐं खेती में। पर असां होतिरी ही ज़िमेदारी सां पाणी बचाए था सघूं? दोस्तो, पाणी ही जीवन आहे, पाणीअ बिना सभु सूनो आहे। जल माण्हुनि जी पहिरीं ज़रूरत आहे। सुबुह उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं माण्हू जल जो उपयोग करनि था। मींहं जो पाणी अॼु जे टाइम ते ॾाढो उपयोगी आहे। हिन कारण सां अॼु जी सरकार माण्हुनि खे ॾाढो जागरूक करे थी। इन करे चवणी आहे त बूंद बूंद मां सागर ठहंदो आहे। भारत में हर साल खोड़ बारिश थींदी आहे, पर तॾहिं बि ॾाढी जॻहियुनि ते पाणी जी भारी कमी थींदी आहे। अॼु बि गांव जा माण्हू पाणी जे लाइ ॾाढो पंध हली करे वेंदा आहिनि। अॼु पाण ॾिसूं था, नदियूं सुकी थी वञनि, तलाउ ख़तमु था थी वञनि ऐं बोरवेल बि सुकी था वञनि। हिन जो छा कारणु आहे? छो की असां बारिश जो पाणी नथा बचायूं। असां सभिनी शुरूआति खां इहो ॿुधियो आहे त पाणी ही हयात आहे, पाणी ही ज़िंदगी आहे। दोस्तो, इहो अखर असां किताबुनि में बि पढ़ियो आहे, क्लासनि में बि सेखारियो वियो आहे ऐं भितनि ते बि लिखियलु ॾिठो। पर छा कॾहिं असां हिन ॻाल्हि खे दिलि सां सम्झो? अॼुकल्ह मोबाइल चार्ज करण लाइ असां हर जॻह चार्जर ॻोल्हींदा आहियूं। उहो ॾींहुं परे कोन्हे जॾहिं असांखे पाणीअ जी हिकु बोतल लाइ लाइन में लॻणो पवंदो। बरसाति जो पाणी बचाइण जो मतिलबु छा आहे? जेको पाणी वरसे थो, हुन पाणीअ खे जमा करणु ऐं ज़रूरत जे समय ते इस्तेमालु करणु। हिन जा ॿ मुख्य तरीक़ा आहिनि। पहिरों, बरसाति जे पाणी खे सिधो ज़मीन में विझो, जंहिंसां ज़मीन जो पाणी वधंदो। ॿियो, बरसाति जे पाणी खे टंकी या गड्ढे में जमा करे पोइ इस्तेमालु कयूं। दोस्तो, हाणे असां ॾिसंदासीं बरसाति जे पाणीअ खे बचाइण जा छा छा फ़ाइदा आहिनि। भूजल जो स्तर वधंदो, जंहिंसां बोरवेल ऐं कुअनि में पाणी भरिजी वेंदो। किसाननि खे खेतीअ लाइ पाणी मिली वेंदो आहे। घरनि में पीअण लाइ, साफ़ सफ़ाई लाइ ऐं वणनि में विझण लाइ कमु ईंदो। रस्तनि ते पाणी न भरिजंदो ऐं बाढ़ जो जोखिम घटिजी वेंदो। टैंकर ऐं नगर पालिका ते निर्भर न रहंदासीं। हाणे पाण सम्झी विया आहियूं की जल संरक्षण छा थींदो आहे। हाणे असां ॾिसंदासीं पाणी बचाइण जा आसान तरीक़ा। छत जो पाणी जमा करणु, जेके अंग्रेज़ीअ में चवंदा आहियूं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। जॾहिं बरसाति थींदी आहे त असांजे घर जी छत में ॾाढो पाणी किरंदो आहे। हिन पाणीअ खे पाइप सां टंकी, गड्ढे या हौज में जमा करे था सघूं। हे पाणी बागवानी, घर जी सफ़ाई, लटा धोइण ऐं शौचालय में इस्तेमालु थींदो। हे सिस्टम लॻाए करे असां सालनि लाइ बेफ़िक्र थी था सघूं। हिन जो ख़र्च बि घटि हूंदो आहे। ॿिए नंबर ते ईंदो वण लॻाइणु। वण मिटीअ खे ॿधी रखंदा आहिनि, जंहिं करे पाणी मिटीअ में समाइजी थो वञे। जॾहिं वण वधीक हूंदा त बरसाति जो पाणी रिसी रिसी करे भूजल खे वधाईंदो। दोस्तो, हर माण्हू अगरि साल में हिकु वण बि लॻाए त ॾाढो फ़र्क़ु पइजी वेंदो।

0: वणु लॻाइणु हिकु नंढो कमु आहे, पर हिन जो असरु ॾाढो वॾो आहे। टियों तरीक़ो आहे सोकता गड्ढो ठाहिणु। हे अहिड़ो गड्ढो हूंदो आहे जेको बरसाति जे पाणी खे सोकण लाइ ठाहियो वेंदो आहे। हिन में कंकड़, कोयलो ऐं रेत विझिबी आहे। पाणी धीरे धीरे धरतीअ में समाइजी वेंदो। हिन खे असां घर जे अंगण में या पुठे पासे बि ठाराए था सघूं। चौथो तरीक़ो आहे घर जे कमनि में पाणीअ जो समझदारीअ सां इस्तेमालु करणु। बुश कंदे वक़्तु नल खे बंदि रखो, छो जो 5 मिंट नल चालू रहण सां 15 सां 20 लीटर पाणी बर्बादु थींदो आहे। बासण मलंदे वक़्तु सॼा बासण इकठा करे मलियो। हर बासण खे अलॻि मले पाणी न विञायूं। लटा वॉशिंग मशीन में तॾहिं धो जॾहिं मशीन भरिजी वञे। गाॾियुनि खे पाइप सां न धोई बाल्टी कपिड़े सां धोइजे। पौधनि खे सुबुह शाम पाणी ॾियो, जंहिंसां पाणी जल्दी सुके न। टॉयलेट में हर दफ़े फ्लश दॿाइण सां 8 सां 10 लीटर पाणी जान थींदो आहे। पाणी बचाइण लाइ तव्हां डुअल फ्लश सिस्टम लॻाए सघो था। घर में कंहिं बि नल में लीकेज आहे, हुन खे जल्द ठीकु कराइजे। पौधनि में पाणी ॾींदे वक़्तु ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी अपनाइजे। कपड़नि ऐं बासणनि में इस्तेमालु थियण वारो पाणी वरी सां पौधनि में इस्तेमालु कजे। अक्सर माण्हू पाणी जी बॉटलियूं पी करे अधु फिटी कंदा आहिनि। हिन आदत खे मटणु ॾाढो ज़रूरी आहे। किथे ॿाहिरि वञो था त घर सां पंहिंजो पाणी खणी वञो। आसे पासे जे माण्हुनि खे ऐं मित्रनि माइटनि खे पाणी बचाइण लाइ जागरूक कजे। दोस्तो, स्मार्ट वॉटर मीटर लॻारायो जो पाणीअ जी खपत चेक करे। असां पंहिंजे मोबाइल में अलार्म या रिमाइंडर लॻाए था सघूं, जंहिंसां असां वक़्त ते मीटर बंदि करे पाणी जी खे बर्बाद थियण सां बचाए सघंदासीं। दोस्तो, पाणी बचाइण खे वॾो कमु कोन्हे, बसि थोरो ध्यानु, थोड़ी समझ ए थोड़ो फर्ज। जै हर घर, हर स्कूल, दुकान ए गाँव पानी बचाने जा नंढा नंढा तरीका अपनाए वठन, ता असांजी अचण वारी पीढ़ी के पानी जी कमी न थींदी। ता सबई हिना गाल के समझो, अज अगर पानी न बचायो से ता असांजा बार पानी वठी करे पीएंदा। अन्या ताई असा समझो से कि बरसात जो पानी बचाइण छा आहे, इनजा छा छा फायदा आहिन, ए असां पंहिंजे घर, मोहल्ले ऐं समाज में कीअं लागू करे था सघूं। पर असली सवाल इहो आहे कि छा अॼु सां पोइ बि असां कुझु मटिजंदासीं, या वरी हिन ई खे बि हिकु भाषण सम्झी भुलिजी वेंदासीं। अचण वारो भारत कीअं हूंदो, इहो असांजे अॼु जे फ़ैसिले ते टिकियलु आहे। जे करे असां अॼु पाणी न बचायोसीं, बूंद बूंद जी क़दुरु कोन कईसीं, त सुभाणे असांजी पीढ़ी पाणीअ खे सोन जे अघ में ख़रीद कंदियूं। तव्हां सोचियो, असां तरक़ी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पर अगरि नलनि में पाणी न हूंदो त स्कूल कीअं हलंदा? अगरि खेतनि में सिचाई न थींदी त अन किथां ईंदो? अगरि ॿार बच्चा किनो पाणी पीअंदा, बीमार थींदा, त छा इहा तरक़ी आहे? दोस्तो, असांखे हाणे इंतज़ारु न करणु खपे। हर घर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुजणु खपे। हर स्कूल में पाणी बचाइण जो सबक़ हुजे। हर कॉलोनीअ में पाणी बचाइण जो जी योजना हुजे। अॼु असां पाण सां पुछियूं, छा मां पाणी जी बूंद बचाई आहे? छा मां ॿियनि खे पाणीअ जो क़दुरु ॿुधायो आहे? हिकिड़ी नंढी कोशिश वॾो बदिलाउ करे सघे थी। बसि हिकु बाल्टी पाणी रोज़ु बचायूं, हिकु वणु लॻायूं, इहा ई बदिलाउ जी शुरूआति थींदी। अचो त अॼु असां संकल्प कयूं कि बरसाति जो पाणी बचाईंदासीं ऐं हिकु हिकु बूंद जी क़दुरु कंदासीं, ऐं असांजी अचण वारी पीढ़ियुनि खे बि पाणी जी चिंता खां बचाईंदासीं। आख़िरीअ में मां सिर्फ़ु इहो ई चवंदसि, दोस्तो, जेकर ज़िंदगी बचाइणी आहे त जल बचाइणो ज़रूरी आहे। अचण जे वक़्त में पाणी जी क़ीमत सम्झण वारो माण्हू ई अक़लमंद हूंदो। असांखे इहे ॻाल्हि सम्झणी पवंदी कि पाणी बचाइणु कोई विकल्प न आहे, इहे असांजी मजबूरी ठही वई आहे। अगरि अॼु बि असां जागरूक न थींदासीं त असां हिकु हिकु बूंद लाइ विणंदासीं। अॼु जे असां वर्षा जल खे समझदारीअ सां न संभाले रखंदासीं त सुभाणे वर्षा असांखां रूसी वेंदी। हाणे हिकु सुकियल धरती ते कोई बि ख़्वाब न पलंदा, न हरियाली, न ख़ुशहाली। दोस्तो, अचो अॼु असां हिकिड़ी नई सोच सां ऐं नए संकल्प सां अॻिते वधूं। पाणी बचायूं, ज़िंदगी बचायूं। धन्यवाद आकाशवाणी, वरी मिलंदासीं हिकु नए विषय सां गॾु। जय झूलेलाल।
1: दोस्तो, हर तरफ़ झूलेलाल साईं जी जयकार आहे।

अलियो पियो हले झूलण साईं जो त अचो असां ॿुधंदासीं झूलण साईं जो हिकु ई सुहिणो गीत कलंगिया वारा लाल मोहम्मद रफ़ी ऐं राम पंजवाणी जन जो लिखियलु ॻायल ई सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तों, हेपेटाइटिस बी, शायद असां इहो नालो ॿुधो हूंदो, पर असांखे ख़बर कान्हे त ही केतिरो ई ख़तरनाक वायरस आहे। दोस्तों, वायरल हेपेटाइटिस जी सुजाॻीअ लाइ ई हर साल 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हिन बीमारीअ सां लीवर में सूजन थींदी आहे ऐं जंहिंसां कैंसर बि थी सघंदी आहे। दोस्तों, हीअ एतिरी ख़तरनाक बीमारी

शुरुआत थी। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस हर साल देश में 26 जुलाई मनायो वेंदो आ। दोस्तों, छा तांके खबर आ त कारगिल युद्ध दुनिया जी सबिन खां वडी पहाड़ी युद्ध क्षेत्र मां हिक आहे। असांजे जेके जाबाज हुया उन्हनि -10 डिग्री टेम्परेचर में 18,000 फिट जी खड़ी चढ़ाई चढ़ी करे दुश्मन के धूल चटाई हुई ऐं देश के 26 जुलाई 1999 में ही ऐतिहासिक जीत ॾियारी। ही युद्ध लगभग 60 ॾींहनि ताईं हलियो। भारतीय सेना हिन मिशन के नालो ॾिनो ऑपरेशन विजय। हिन युद्ध में 527 जवान असांजा शहीद थी विया ऐं 1300 खां वधीक जवान घायल थी विया। दोस्तों, ही युद्ध एक खतरनाक जंग हुई जैमें दुश्मन 18,000 फिट मथे परकन में लिखी वेठा ऐं हेठ असांजे जवानन जे मथां गोलियूं पई बरसन। बर्फ़ पई किरे पर असांजा जवानन जा हौसला त हिमालय खां वॾा हुआ ऐं आख़िरकार 60 ॾींहनि जी जदोजहद ऐं युद्ध जंग खां पोइ असांजे तमामु शहीदनि जी कुर्बानियुनि खां पोइ देश में हिन युद्ध खे विजय मिली ऐं तॾहिं खां वठी 26 जुलाईअ खे कारगिल विजय दिवस मल्हायो वेंदो आहे। दोस्तो, अचो असां पंहिंजी शहीदनि जी यादि में ॿुधूं था ही गीत। पंहिंजे वतन सां कला हजारी जंहिंजो कमला केसवानी जंहिंजो ही सुहिणो गीत ॿुधंदासीं।

दोस्तो हिन सुहिणे गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थियो। वरी जल्द मिलंदासीं हिकु नई ख़ुशी हिकु नई ख़बर सां। जेसिताईं पंहिंजी रेडियो साथी कविता चांदवानीअ खे ॾींदा इजाज़त। जय झूलेलाल, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाणा।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 11वां भाग।
2: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 11वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि अवंती से निकलकर वृकवन पैठार गांव प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर गांव के निकट के एक गांव पहुंचते हैं। उनकी पल पल रक्षा करने वाले जोगी ने परम गुरु बाबा गोरखनाथ के जन्म की पावन कथा सुनाई थी। अब आगे
3: उमड़ते घुमड़ते जल प्रवाह से आप्लावित वर्षा नद के किनारे प्रतीक्षा करते हुए राजा भर्तृहरि और ओघड़ जोगी पानी

0: कब उतरे और कब पहुंच जाए नदी के उस पार। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, किंतु पानी उतरने के कोई आसार नहीं।
1: भरथरी, अब तो संध्या होने पे और प्रतीत होता है कि रात्रि विश्राम के आश्रय की खोज कर लेनी चाहिए। गरक, यहाँ तो कोई वृक्ष भी नहीं है।
2: हाँ, और इस विस्तृत पार वाली नदी के पार उतरने का कोई साधन भी नहीं है महाराज। अरे हाँ, एक नाव तो तट पर है, पर केवट कहीं नहीं दिखाई देता।
1: खोजने पर मिल भी सकता है राजा, मैं आसपास देखता हूँ। तुम्हें रात्रि आहार भी चाहिए, तुम यहीं रहना।
2: आप किधर जा रहे हैं महाराज?
1: उस तरफ, मुझे आभास हो रहा है कि वहां कोई मिलेगा, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अरे दोनों मिलकर खोजें।

0: मैंने कहा था ना भर्तरी, मुझे आभास हो रहा था कि निकट ही कहीं आश्रय भी मिलेगा और भोजन भी। वो वहां देख, एक झोपड़ी दिख रही है।
1: त्रिकालदर्शी हैं आप महाराज?
0: ना ना राजा, जो दिख रहा है वो गुरु की इच्छा है। मैं साधन भर हूं। कोई है? कोई है? अलख, अलख निरंजन।

0: प्रणाम महाराज।
1: सौभाग्य बड़ी।
0: आज्ञा दे महाराज, क्या सेवा करूं? जल भी तो नहीं पिला सकते आपको। महाराज, हम सुपच जाति के लोग हैं, जूठन पर जीते हैं, हम जूठन खाने वाले हैं।
1: ला, वही दे दे, दे दे माई। अरे हम भी तो जाने कि जूठन का स्वाद कैसा होता है।
0: ना ना देवता, पातक लगेगा।
1: तुझे जोगी की भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा ला ला, इस खप्पर में अपनी जाति की भिक्षा डाल दे। अपनी जाति को आज और अभी त्याग दे। मेरे साथ बोल बोल माई, अलग अलग गोरख गोरख।
2: भ्रातरी को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। स्त्री के दोनों बालक कुत्ते के साथ निकट आ पहुंचे हैं और वो कभी जोगी बाबा और कभी भूमि पर मस्तक रगड़ती अपनी माँ को देख रहे हैं। वो विनीत भाव में कहे जा रही है,
0: जाति तो देह के साथ ही छूटती है बाबा, कर्म का भी लेख है यह, जो जन्म के साथ आता है और मरण के साथ ही मिटता है।
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। जाति और जन्म अलग अलग बातें। आकाश से टपकने वाली बूंद निर्मल होती है माई, कीचड़ तो बस इस संसार में है जो उसे आत्मसात कर लेता है। मेरी जाति छूट गई तो फिर तेरी कैसी बनी रहेगी? अरे गुरु का नाम पारस है, पारस लोहा भी छूकर सोना बन जाता है। हम सब मानस जात है, कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। वैसी ये आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर। अब देर न कर माई, ला इस खप्पर में पानी भर दी, मैं तेरे पूरे परिवार की जात पी लेता हूं। जैसे किसी ने समुद्र को पी लिया था वैसे ही ला ला माई ला।
2: स्त्री अपने आप से लड़ती हुई सी झोपड़ी में गई और जल के संग दो रोटियां ले आती है।
0: अभी बस इतना ही है महाराज, दो रोटियां बच्चों के लिए बचाकर रखी थी।
1: आनंद है, ओम ओम परमानंद है माई। एक रोटी बच्चे के लिए रख ले भरथरी।

0: ये आधी रोटी तू भी खा ले। घटे पिंड निरंतर व्यापी श्री शंभु यति गुरु गोरखनाथ निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप। बोलिए हो जाति भस्म, जाति भस्म हो, जाति भस्म हो, अलग अलग। गोरख गोरख।
1: जोगी जोर से चिंघाड़ता है, श्रृंगी मुंह से लगाकर लंबी करू मारता है। भरथरी को लगा जैसे धरती एक बार पूरी घूम गई है। ओघड़ ने रोटी के चार टुकड़े किए, एक श्वानों को, दूसरा पास खेलते हुए बच्चों को और एक भरथरी को देकर एक हिस्सा स्वयं लिया और भरथरी से कहा,
0: राजा इसे खा ले, इससे ऋतुओं के कुप्रभाव से तेरी रक्षा हो जाएगी। और कह अलख निरंजन,
2: अलख निरंजन।

0: तृप्त हुए माता, तेरे और तेरे परिवार का सुख श्री बढ़े। हाँ, अब ये बता कि इस नदिया के पार कैसे जाना होगा, वो उस नाव का केवट कहाँ मिलेगा?
1: महाराज, मेरा पति जब आएगा तब आपको नदी के पार ले जाएगा, आता ही होगा। तब तक आप इस कदम की छाह तले विश्राम करें, मैं चटाई बिछाए देती हूँ, मैं गाय भी दोहलाती हूँ, गुनगुना दूध पी लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी महाराज।
2: लगता है ये रात भी आज यहीं बीतेगी।
0: अरे क्या अंतर पड़ता है, इस पार बीते या उस पार, हाँ रात को तो बीतना ही है। राजन, दूर वो वहां परछाई देख रहे हो?
2: संभवतः उस स्त्री का पति है महाराज, मध्य के प्रभाव में लगता है। देखो उसके पांव डगमगा रहे हैं। इधर आया ही नहीं, झोपड़ी की ओर मुड़ गया।
1: महाराज यह दूध ले लें, मेरा पति तो अपने संग जूठन ही लेकर आया है, सो आपके योग्य नहीं महाराज, हम तो जूठन पर ही आश्रित हैं, इसलिए घर में आटा भी नहीं रखते, अन्यथा मैं रोटियां ही बना देती।
0: सब अच्छा है, उचित है माई, अरे हम संतुष्ट हैं, है ना भर्थरी? तुम्हारा ये गोरस अमृत तुल्य है। तू कुछ सोच रहा है भर्तरी? कहीं उज्जैनी तो याद नहीं आ रही है तुझे?
2: जी महाराज।
0: गोरख, देखो यहां घर में आटा तक नहीं और वहां किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। प्रचुर धन, प्रचुर धान्य, शक्ति, वैभव, विलास, दूध और मदिरा पनालों में बहती है, सहस्त्रों भवनों और आलयों में व्यंजन इतने प्रकार के कि श्रीमंतों के स्वान इन्हें सूंघकर भी हट जाते हैं। लगता है कि पार पहुंचना अब संभव नहीं है।
1: लज्जित हूं महाराज, मेरा पति मद के उन्माद में होने के कारण आपके सामने नहीं पड़ रहा है। फोर तक जब मद का प्रभाव उतर जाएगा तभी वह नाव लेकर जा पाएगा।
0: साध्वी चिंता न कर, अरे आज की रात कदम की छाव में ही हमारे बिताने का योग है। तू जा भोजन और विश्राम कर, हमें कुछ नहीं चाहिए माई, क्यों भर्थरी?
2: जी जोगी।

0: या जागता है भर्तरी?
1: जाग रहा हूं महाराज।
0: तो गुरु का ध्यान लगा, गुरु पर विश्वास कर। मैं और तू कठिन वन पर्वतों से होकर सुरक्षित निकल आए हैं। न तो सिंह वृक या व्याघ्र ने खाया और न ही हमें अजगर ने निगला। प्रेतपुरी से बचाया है तू, इसलिए क्योंकि गुरु की रक्षा में था तू। गुरु की रक्षा में दुखों का उपचार संसार के बीच रहकर ही हो सकता है। लगता इसीलिए गुरु गोरखनाथ संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था, देह को साधो, मन को साधो, विचार को साधो। मन, वचन और वाणी की फाक जब कम होगी तभी तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जाग रहा है राजा भर्तरी?
1: हाँ हाँ महाराज।
0: ये भूमि जाग रही है, वो स्त्री जाग रही है जो अभी अभी हमें दूध पिला कर गई। भैरव के ये वाहन जाग रहे हैं, जागृत और सचेत। किंतु तेरी उज्जैनी सो रही है, अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर सो रही है उज्जैनी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी स्त्री जाग रही है, सोई नहीं रानी पिंगला। तेरी चिंता में नहीं सोई, और हां वो भी जाग रही है जो हर पल प्रतिवक्त तेरे साथ है, स्थान स्थान पर तुझे गिरने से बचाती है, तेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है।
1: वो कौन जोगी महाराज?
0: तू उसे भूला नहीं है?
1: शची शची शची।
0: और वो भी जाग रही है भर्तरी, जो तेरे काव्यों पर मोहित है। वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है, जो जानती है कि तेरे काव्यों में नैतिकता तो है किंतु सहजता का अभाव है। इसलिए भर्तरी यहां से चंद्रपुर केवल 2 दिन की यात्रा पर है। वहां पहुंचो राजा, तुम्हें अकेले जाना है।
1: और देव आप?
0: गुरुदेव, गुरु की इच्छा यही है। राजा भर्तरी, चंद्रपुर अब अधिक दूर नहीं है। भटक न जाओ तो मार्ग भी निरापद है। आगे के मार्ग में मैं नहीं होऊंगा। गुरु का संदेश मिला है कि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं। सुपत परिवार अब सो गया है और तुझे जागते रहना है। हाँ।

और ओघड़ चल पड़ा। भृथरि देखते रहे, ओघड़ नदी के किनारे पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर भृथरि पर दृष्टिपात किया। भृथरि ने उसकी आंखें देखीं, इस फुलिंग की तरह चमकती हुई। ओघड़ अब छाया भर दृष्टिगोचर हो रहा था। उसने नदी में प्रवेश किया, भृथरि की ओर अभय मुद्रा में हाथ उठाए। भृथरि को लगा कि जोगी का अट्टहास हवाओं में गूंज गया है और विस्फरित भृथरि ने देखा कि वह नदी के जल पर बहा चला जा रहा है। देखते देखते उस पार अदृश्य हो गया। देखते रहे अकेले खड़े राजा भृथरि, आश्चर्य से स्तब्ध, मूक और हतप्रभ।

0: अकेला औघड़ भी अपनी राह चला गया। किंतु उसने कहा था, कोई है जो मुझे स्थान स्थान पर गिरने से बचाती है, मेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है। शची, शची, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो, मेरे एकांत की साझीदार? औघड़ कह रहे थे कि तुम भी जाग रही हो। तुम्हारी अनिद्रा का कारण मैं ही हो सकता हूं शची। मैं चिर अतृप्त, चिर संशयी, भाग कर चल तो पड़ा, लेकिन जानता नहीं कि कहां पहुंचना है। शची, शची, कुछ तो बताओ।
1: क्या बताऊं राजन?
0: शची, तुम मेरे साथ हो ना?
1: हाँ राजन।
0: तुम्हारा साथ ही मेरी तृप्ति है, मेरा निश्चय है शची
1: जी।
0: ये अनुभव एकांगी नहीं, सापेक्ष अनुभव है।
1: तो
0: आज यहां से जिस सुपच दंपति का अतिथि हूं वो नितांत अकिंचन है, किंतु किसी महामहिम नरेश से अधिक सुखी। मैं तुमसे पूछता हूं शची कि ऐसा क्यों है, उनकी तृप्ति उन्होंने कहां से पाई शची?
1: मैं क्या बताऊं राजन, राजा तो आप हैं।
0: प्रिय, जाने कब मैं ये स्वीकार कर पाऊंगा कि पैठार की निर्धनता के बीच अपनत्व की निधि जो मैंने देखी, उसके सामने अवंती का वैभव कितना तुच्छ, कितना श्रीहीन है। किंतु पैठार और अवंती दोनों ही की स्मृति मुझे साथ साथ हो आती है, और इस महानाट्य का वो विष्कंभक औघड़ जोगी भी।
2: गोरख,
0: अभी अभी जो विज्ञान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए नदी ताल पर पांव पांव चलते उस पार चला गया है, क्या ये अविश्वसनीय दृश्य था? जोगी आया था गुरु के आदेश पर मेरी रक्षा करने, और यहां लाकर छोड़ गया। आगे की राह मुझे स्वयं ही चलना है, पर चेतावनी दे गया है कि यदि भटका नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाऊंगा। त्रिकालदर्शी जोगी का आशय क्या था? 2 दिन का मार्ग है चंद्रपुर का।

0: अचानक कुत्तों के भौंकने का स्वर तेज हो जाता है, जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। सुपच नारी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है।
1: कौन है, कौन है? महाराज, आप सुरक्षित तो हैं?
2: हाँ देवी, संभवतः कोई मकर है, भटकते भटकते इधर आ गया है।
1: चिंता ना करें, आसपास जाल लगे हुए हैं महाराज, आप तक कोई हिंस्र पशु नहीं पहुंच पाएगा, रक्षा का पूरा प्रबंध है। अरे, चूकी महाराज कहाँ है?
2: वे चले गए हैं देवी।
1: कहाँ? नाव और केवट के बिना कहाँ चले गए?
2: नदी पर चलते चलते पता नहीं कहाँ।
1: नदी पर चलकर? सिद्ध पुरुष थे वह।
3: वो तैर कर नहीं गए?
2: नहीं, कहते थे यहां तक ही वो मुझे रास्ता दिखाने आए थे, यहां से आगे मुझे अपना मार्ग स्वयं चुनना है।
3: महात्मा, चिंता न करें, भोर होते ही मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। रात थोड़ी सी बची है, तब तक आश्वस्त होकर विश्राम करें। हमारा ये श्वान युगल नील और मणि आपको सुरक्षा देगा। मेरे वीर सैनिक हैं, सुरक्षा में कभी चूक नहीं करते।
2: क्या नाम बताया? नील, मणि। मेरे वेगवान सुदर्शन और स्वामी भक्त अश्व का नाम भी यही था।
1: महाराज, कुछ कहा?

0: देवी, मैं जानना चाहता हूं कि इस श्वान युगल को नीलमणि नाम क्यों दिया?
1: हमारे यह है ना, मदपान के पश्चात किसी नरेश से कम नहीं होते। उज्जैनी के विश्व विश्रुत नरेश भर्तहरी के विषय में कहीं सुन लिया था कि नीलमणि उनके सर्वाधिक प्रिय अश्व का नाम नीलमणि है, सो जोश में आकर श्वान को नील और श्वानी को मणि संबोधन दे डाला।
0: अनुकरणीय नरेश।

0: जय महाकाल।
1: देवी, इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मुझे तो बस पार पहुंचाने की व्यवस्था भर कर दो।
2: महामना, आप हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। एक नया जीवन आपने हमें दिया है। अभी तक हम अपने आप को केवल पतित ही मानते रहे। एक ऐसा पशु जो मात्र इसलिए जीवित है कि वह मरना नहीं चाहता। जाने क्यों हम समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं। आपने तो हमारी जाति ही बदल दी, जैसे जन्म ही बदल गया, नया जन्म दिया। बस इतना मान और दे दें कि इस झोपड़ी के द्वार पर अन्न के कुछ दाने ग्रहण कर लें। ये उच्छिष्ट अन्न नहीं है, हमने बीज के साथ अपना स्वेद देकर उसे उत्पन्न किया है महाराज।
1: इस आतिथ्य के लिए मैं कृतज्ञ हूं देवी। मैं यदि अधिक समय और रुका तो संभवतः अपने पथ से दूर हो जाऊंगा, अतः अब आज्ञा दें। बंधु, मुझे उस पार पहुंचाने की कृपा करो।
2: महाराज, आधी घड़ी और ठहरे महाराज।
3: गृहिणी ने पति को सचेत कर संकेत किया तो वह पुनः सांटी उठाकर आंच पर सिके भुट्टे पूर्वज झाड़ने लगा। थोड़ी ही देर में गृहिणी ने दाने सूपड़े से फटक कर साफ किए और अतिथि के गमछे से गांठ बांध दिए। भ्रतहरि जब सुपच परिवार से विदा हुए तो गृहिणी और दोनों बच्चों की आंखों में आत्मीयता और कृतज्ञता के आंसू भर आए। डोंगी धीरे धीरे नदी की सतह पर आगे सरकती जा रही थी। भ्रतहरि का कुछ जैसे बालू का तट छूटता सा जा रहा था, लेकिन आगे भी ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें बुला रहा था।

0: अब मुझे चंद्रपुर पहुंचना है।
1: भृतहरि का अब लक्ष्य था चंद्रपुर। उन्हें बताया गया कि वहां चारुमित्रा है, उनकी कविताओं की प्रशंसिका, जिसने वसंत को प्रेरित किया था कि वह उनके संस्कृत काव्य को लोक भाषा में प्रस्तुत करे। विद्वानों के लिए लिखा गया यह काव्य लोक हृदय द्वारा ग्रहण किए जाने की एक तरह से पुष्टि होगी, कसौटी होगी उस काव्य की संवेदना की, एक परीक्षा। भृतहरि को लगा कि चारुमित्रा अपने भवन के झरोकों में खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
2: अनक गोरख गोरख गुरु गोरख, बस यहीं तक तुम्हें पहुंचाने का आदेश गुरु ने दिया था। अब आगे मार्ग तुम्हारा है, यदि भटके नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा भर्तहरि, जाग रहे हो ना?
0: जाग रहा हूं जोगी महाराज। तो बंधु विदा, कभी अवसर मिला तो पुनः तुमसे आकर मिलूंगा।
3: ये हमारा सौभाग्य होगा देवता।

0: इस बीच नागर जीवन से कोई संपर्क नहीं रहा। चंद्रपुर के व्यापारियों का संपर्क निश्चय ही उज्जैनी से होगा, कुछ समाचार मिलेंगे। इस बीच वहां क्या घटा, शुभ अथवा अशुभ? शायद रानी पिंगला का कोई समाचार मिले। महामात्य पूर्ण रथ निश्चय ही अत्यधिक चिंतित होंगे। कुमार विक्रम की उद्दंडता अवश्य बढ़ गई होगी। राजनीतिक षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जा रहा होगा। राजदंड का जब भय ही ना रहे तो सर्वत्र अनियंत्रित स्वार्थ शीर्ष उठा लेते हैं, अनियंत्रित और अराजक प्रजा। भर्तृहरि, अवंती कातर है, वो तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें, तुम्हारी अवंती भर्तृहरि, तुम्हारी अवंती।
1: अलोक गोरख गोरख, राजा भले ही तुझे अटपटा लगी पर मैं कह ही देता हूं कि तेरी उज्जैनी सो रही है अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर। भर्तृहरि, तू भी सो गया क्या? जाग, क्या अभी शेष नहीं हुई है? यहां से 2 दिन के रास्ते पर

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 11वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार मुकेश विश्वकर्मा, जोगी मांगीलाल शर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से चल रहे इस विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। एक पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी

बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। साथियों, आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय जिन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की बात में हमारा आज का विषय रहेगा कारगिल विजय दिवस। सोशल साइट्स का उपयोग कितना लाभकारी और कितना हानिकारक पर होगी चर्चा। जीवन आलोक का हमारा आज का विषय रहेगा पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे कदम बढ़ाएं। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत सुनेंगे जरूरी जानकारी। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए होंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के विशेष उपलक्ष कारगिल विजय दिवस पर जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय और देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान तथा देशभक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सन 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कठिन परिस्थितियों में साहसपूर्वक युद्ध लड़ा और 26 जुलाई 1999 को सभी महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः तिरंगा फहराया। यह विजय भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर युद्ध लड़ा। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे था, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार तथा अन्य अनेक वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत पराक्रम से पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उनकी वीरता आज भी प्रत्येक भारतीय को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। कारगिल के वीर सैनिकों का जीवन हम युवाओं को यह सिखाता है कि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए तथा सेना बलों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस केवल एक विजय का उत्सव नहीं, बल्कि उन अमर वीरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की। हमें उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार, अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं सोशल मीडिया का उपयोग कितना लाभकारी कितना हानिकारक। दोस्तों आज का युग इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का युग है। सोशल साइट्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन इनका अत्यधिक या गलत उपयोग कई समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि सोशल साइट्स का उपयोग कितना सही है और कितना गलत। साथियों सोशल साइट्स का सही और संतुलित उपयोग अनेक प्रकार से लाभदायक है। इनके माध्यम से हम देश दुनिया की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शैक्षणिक सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। व्यवसायी अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। परिवार और मित्र चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनसे आसानी से संपर्क बनाए रख सकते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने, प्रतिभा दिखाने और नए कौशल सीखने में भी सोशल साइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहाँ सोशल साइट्स के अनेक लाभ हैं, वहीं इनके दुष्प्रभाव भी कम नहीं हैं। इनका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी करता है और पढ़ाई तथा काम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई लोग झूठी खबरें, अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा होता है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी अकाउंट, निजी जानकारी की चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक तनाव, अकेलेपन और मोबाइल की लत का कारण बन सकता है। सोशल साइट्स का उपयोग सीमित समय तक करना चाहिए। किसी भी समाचार पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और सकारात्मक तथा

उपयोगी सामग्री ही साझा करनी चाहिए। सोशल साइट्स ना तो पूरी तरह अच्छी है और ना ही पूरी तरह बुरी। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम सोशल साइट्स का उपयोग संयम, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें तो वे शिक्षा, ज्ञान, रोजगार और संचार का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इसीलिए हमें सोशल साइट्स का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए ताकि हमें उनके लाभ प्राप्त हों और हानियों से हम बच सकें। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीवन आलोक के हमारे आज के विषय की। दोस्तों, जीवन एक निरंतर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। गलतियां करना असफलता नहीं है, बल्कि उनसे कुछ ना सीखना वास्तविक असफलता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए हमें पुरानी गलतियों को याद करके पछताना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। गलतियां हमें हमारे अनुभवों से परिचित कराती हैं। वे बताती हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। यदि हम अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो भविष्य में वही गलती दोबारा करने से बच सकते हैं। महान वैज्ञानिकों, नेताओं और सफल व्यक्तियों ने भी अनेक बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर नई शुरुआत की और अंततः सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक है। उसके बाद उसके कारणों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। समय का सदुपयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयास भी सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में भी गलतियां होना स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आना, पढ़ाई में लापरवाही करना या समय का सही उपयोग ना करना जैसी गलतियों से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। नियमित अध्ययन, अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से सफलता अवश्य मिलती है। पुरानी गलतियां हमारे जीवन की शिक्षक होती हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। हमें बीतते हुए समय पर पछताने के बजाय वर्तमान में मेहनत करनी चाहिए और भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता और प्रगति का मार्ग है। साथियों, समय हो गया है एक और गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह गीत। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए अपनी दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अब हम लेंगे छोटा संतराल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा
9: याद है, बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे।

0: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
3: कहाँ?
2: एडमिशन कराने,
1: खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल का समय पूरा हुआ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा का। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं 1999 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और साथियों ने। आर किरण के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: श्रोताओं, अभी ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं से कविता कृष्णमूर्ति हरिहरन और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल से।
1: अरे

नमक हलाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजान साहब ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म नाजायज से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और रूप कुमार राठौर ने। इस गीत को लिखा है सुदर्शन वाकिन ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक सामाजिक जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट फोटो वीडियो ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा लाइक कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य तनाव भय या अशांति फैलने की संभावना हो पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप का एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत है 1965 में रिलीज हुई फिल्म शहीद से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है प्रेम सोनी ने।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म चक दे इंडिया से सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज में गीत है जिसे लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान की जोड़ी ने।

इन वाक्यों को सुन के आप पहचान गए होंगे इस गीत को। ये गीत हमने लिया है 1970 में रिलीज हुई फिल्म पूरब और पश्चिम से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में गीत है जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आलम जी की जोड़ी ने। मुश्किल था धरती।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे हैं 1965 में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर आजम से। मोहम्मद रवि की आवाज में ये गीत है, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत दिया है हंसराज बहल ने।

श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म लक्ष्य से शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। अब हम लेंगे छोटा संतराल।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब से कुछ ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नज़दीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के

0: प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए आपको पहले आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें चर्चा का विषय होगा एग्री स्टार्टअप।

एप्स और साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार। 7:30 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसका विषय होगा सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे। रात्रि 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, और 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और 9:30 पर सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें हम आज आपको सुनवाएंगे कलाकार विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:30 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान, और 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कृषि चर्चा। चर्चा का विषय होगा खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर साक्षी सिंह। कल प्रातः 7:20 पर सुनिएगा नमस्कार भोपाल, जिसमें बातें होंगी समाचार पत्रों से, गाने होंगे नए पुराने, समय के साथ कल आज और कल नगर की बातें। 8:30 पर सुनिएगा सुरमई सवेरा कार्यक्रम, और 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम आईना, और 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुन सकेंगे गीत सागर कार्यक्रम, और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे माधव गुडी। आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। कल प्रातः 11:00 आप सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने, और 12:00 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से, और 1:00 हम आपको सुनवाएंगे स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर आप सुन सकेंगे युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी, योगदान आकाशवाणी भोपाल का होगा। कल शाम 6:00 आप सुन सकेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, और रात्रि 7:00 हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारे ना,
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
5: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: आरबीआई कहता है?
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने विक्रम 1 के लॉन्च होने को लेकर कहा कि
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।
0: प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि देश के लोग एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
1: मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है।
0: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की। डॉ. सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रतिनिधिमंडल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने प्रशासनिक सुधारों पर सरकार द्वारा निरंतर ध्यान दिए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए यह बात कही। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी में लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन और 19 करोड़ 98 लाख की लागत से तैयार 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन सहित लगभग 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ की लागत से लगभग 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां गीता भवन और सांदीपनी विद्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा देगी। इसके माध्यम से निवाड़ी जिले के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा।
4: सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की और निवाड़ी में एक आपने का सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने फिर निर्णय किया, मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही। मैं गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूँ। विधि महाविद्यालय और MBA भी खोलना चाहिए तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और MBA भी खोला जाएगा।
0: कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनंदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की गई है। 500 से अधिक बंद पड़े बोरवेलों को पुनर्भरण शॉफ्ट में परिवर्तित किया गया है। 600 से अधिक इंजेक्शन कुओं को 1,700 से अधिक मिनी परकुलेशन टैंकों से जोड़ा गया है और 2,500 से अधिक जल निकायों को जियो टैग किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और शियर जोन सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में दो निम्न दबाव क्षेत्र भी बने हुए हैं। इन्हीं मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना अपर कलेक्टर न्यायालय राजस्व प्रशासन ने पूरे प्रदेश में प्रकरण डिस्पोजल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है। झाबुआ जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज ग्राम पंचायत खेड़ी नवापाड़ा में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम और नगर सुरक्षा समिति सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भाग लिया। आगरमालवा जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज ग्राम साबनी के पास सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बच्चों और महिलाओं सहित 6 अन्य घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

घर आंगन कार्यक्रम सुनविवारी सभी बहनन को वर्षा बहन की राम राम। बहनों कैसी हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छी होंगी। बहनों अपन तो देख ही रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बहनों हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें जी बारिश के पानी को संरक्षण जरूर से करवा चाहिए। और बहनों आप इके लें कोई भी बर्तन या टंकी को छत पर रख कर उसमें बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं और बाद में उस पानी को पीवी के काम में ले सकते हैं। और बहनों आजकल तो सरकार द्वारा भी नई योजना चलाई जा रही है कैच द रेन। ई के माध्यम से कहा है बहनों कि जो ये जो योजना है वो एक जल संरक्षण अभियान है। ई के माध्यम से बरसात को पानी जहाँ गिरे और जब गिरे वहीं सजोए, जी जे अभियान को उद्देश्य है। ये अभियान में वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन और भूजल स्तर को बढ़ावे के लिए प्रेरित करत है। और इसके माध्यम से जैसे घर, सोसाइटियों, सरकारी इमारतों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ जा रहा है। और जाके संग संग जैसे पुराने तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, जलाशय हैं, इन सब की जो गाद हटाकर उनके पानी को रोकने की क्षमता बढ़ा वो भी है, ताकि जल संरक्षण के संग संग जो हमारे पुराने पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको भी पुनर्निर्माण हो सके। और बहनों जाके लें जरूरत

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं जी लोकगीत भंवर सिंह अहिरवार की आवाज में।
2: बरसा की चौकड़िया।

0: बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, कई बार अपन सुनत हैं कि कछु महिलाओं और पुरुषों में लीवर से संबंधित कछु समस्याएं हो जाते हैं। तो जे समस्याएं का हैं, लीवर के प्रमुख रोग कौन से होते हैं, उनके का कारण हैं, कैसे होते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, तो जय से संबंधित भेंट वार्ता आज हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं। एको विषय है यकृत लीवर के प्रमुख रोग और इनसे बचाव। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अनिल कुमार और इनसे बता रही हैं अपनी बहन कल्पना प्रदीप। तो बहनों सुनत हैं जय भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें इसके लिए हम अनेक उपचार अनेक उपाय करते हैं और समय समय पर विशेषज्ञों से सलाह भी लेते हैं। और इसी सलाह के अंतर्गत आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार को और आपसे हम जानेंगे कि यकृत यानी कि लीवर के प्रमुख रोग, उसके कारण, उसके उपचार, बचाव, क्या क्या कुछ लीवर के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करने के लिए हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं। तो डॉक्टर अनिल कुमार, अपने स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो यकृत, इसमें जो बीमारियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, क्या वजह होती है, कुछ हम जानना चाहते हैं, इसके कारण क्या होते हैं।
2: लीवर हमारे पेट के अंदर उपस्थित एक ग्रंथि होती है जो हमारे पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर उपस्थित होता है और इसका वजन करीब 1200 से 1500 ग्राम के बीच होता है।
1: अच्छा।
2: इसके प्रमुख काम होते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म हो रही है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके पाचन में इसका काफ़ी रोल होता है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे जो दवाएं हम खाते हैं या किसी अन्य तरीके से जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं, उनको निकालने में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: फिर जो शरीर के अंदर रक्त होता है जो पुराना हो जाता है तो उसके अंदर कोशिकाएँ टूटती हैं तो उनको भी लीवर उनको तोड़ के किसी और काम के लायक बनाता है, जिससे कि हमारे यूरिन का कलर, हमारे मल का कलर वो उस सब से ही आता है। अगर वो सब नहीं होगा तो इन सब का कलर बदल जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: क्योंकि ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना भी इसमें रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स लीवर में आते हैं जो लीवर की कोशिकाओं को।
1: टॉक्सिन आप किसको कहते हैं?
2: टॉक्सिन्स कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो, जैसे कुछ दवाएँ हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, अल्कोहल है, खाने पीने में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, वो सब टॉक्सिन्स होते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो अगर वो शरीर से निकाले नहीं जाएंगे तो वो शरीर में अपना खराब प्रभाव डालेंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ पैदा करेंगे। ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो लीवर उनको साफ करने में सहायता करता है।
1: ठीक है।
2: तो इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ लीवर में हो रही होती है तो लीवर काफ़ी संभावनाएं होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होने की, जिसमें कि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस।
1: हाँ बिल्कुल सही समय सही जगह आप पहुँच गए कि हम ये जानना चाहते हैं कि लीवर की खास बीमारियाँ कौन कौन सी हैं।
2: हाँ, सबसे प्रमुख हेपेटाइटिस होता है जो इन्फेक्शन होता है जो कई प्रकार से होता है, जैसे एल्कोहल से होता है तो हम बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, पैरासाइट से होता है हम बोलते हैं अमीबिक हेपेटाइटिस,
1: ठीक है,
2: वायरस से होता है हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई, ये सारे वायरल हेपेटाइटिस होते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: इनमें से सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं जिनमें कि कैंसर होने की संभावना होती
1: है। अच्छा।
2: इसके अतिरिक्त अगर कोई बीमारी लंबे समय तक लीवर में बनी रहे तो लीवर सिकुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं सिरोसिस। ये प्रमुखता उन लोगों में देखा जाता है जो शराब का अधिक सेवन करते हैं। फिर उसके बाद सिरोसिस के अलावा लीवर में कैंसर होने की संभावना रहती है, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि शराब जो है एल्कोहल उसमें होता है वो जाके लीवर के अंदर ही उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है।
1: अच्छा।
2: तो इस सारी प्रक्रिया में लीवर के अंदर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और वो बीमार हो जाती हैं, तो उससे हेपेटाइटिस होता है, फिर सिरोसिस होता है और कैंसर की संभावना होती है। तो ये सारी बीमारियां उसमें होने की संभावना होती है।
1: बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि शराब तो कुछ लोग ही इसका सेवन करते हैं लेकिन बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लीवर की बीमारियां हो जाती हैं लेकिन वो शराब यूज नहीं करते, नहीं लेते, तो उनको क्यों हो जाती हैं?
2: शराब के अतिरिक्त जो अन्य तरीके हैं बीमारी पहुंचने के, उसमें से रक्त एक माध्यम होता है। अगर कोई ऐसा खून चढ़ाया गया किसी भी व्यक्ति को जिसमें इन्फेक्शन था, स्पेशली हेपेटाइटिस बी।
1: अच्छा।
2: तो वो होने की संभावना होती है, तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति खून देता है तो उसमें हेपेटाइटिस बी की जाँच की जाती है। खून लेने के बाद फिर से हेपेटाइटिस बी की जाँच की जाती है कि वो मरीज में नहीं चला जाए। फिर इसके अलावा गंदे पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां लीवर में होती हैं, इससे प्रमुखता एल्कोहलिक अमीबिक हेपेटाइटिस, लीवर के अंदर फोड़ा बन सकता है जिसको बोलते हैं लीवर अब्सेस।
1: अच्छा।
2: और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये सारे पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं।
1: अच्छा अच्छा। कई बार ये भी सुनने में आता है कि लीवर में सूजन आ गई है, ऐसा क्यों होता है?
2: सूजन एक जनरल सा वर्ड शब्द है कि जैसे कोई भी बीमारी होगी शरीर के किसी हिस्से में तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, जिससे उस अंग में सूजन आ जाती है।
1: अच्छा।
2: और उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से लीवर में कोई जब बीमारी होती है तो वो सूज जाता है, और अगर बहुत लंबे समय तक रहेगी बीमारी तो सिकुड़ भी जाएगा वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी दोनों ही बातें हो सकती हैं।
2: जी,
1: फूल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है।
2: किसी बीमारी में शुरू में फूलेगा और अगर बीमारी बनी रहेगी तो फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है लंबे समय के बाद।
1: ये तो हुई बात बीमारियों की, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे लीवर, हमारी यकृत में कहीं कोई परेशानी है?
2: लीवर कैसे पता की बीमारी के लक्षण होते हैं प्रमुखता, मरीज को भूख लगना कम हो जाता है, उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, जिम चलाने लगता है।
1: अच्छा।
2: उल्टी होने लगती है। इसके अलावा शरीर के लीवर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेट के दाहिने हिस्से में, फिर बुखार आ सकता है अगर उसके अंदर फोड़ा बन गया है। इसके अलावा सबसे प्रमुख लक्षण होता है पीलिया, आंखों का पीला होना, स्किन का पीला होना या पेशाब का रंग पीला होना, ये सारे लक्षण होते हैं पीलिया के, तो वो लीवर में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं।
1: तो हमारे श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि जब ऐसे कहीं कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पहले ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए और इससे बचाव के उपाय हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि पीलिया खासतौर पर धीरे धीरे अगर बढ़ जाता है तो इसका रूप कुछ ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ।
2: जी, पीलिया बहुत ही खतरनाक लक्षण होता है। पीलिया बीमारी नहीं होती, पीलिया लक्षण होता है, बीमारी लीवर में होती है।
1: हाँ,
2: पीलिया दो प्रकार का होता है, एक तो लीवर में खराबी हो गई, दूसरा ये कि लीवर में जो पित्त बनता है जो पाचन क्रिया के काम आता है उसकी नली में कोई रुकावट आ जाए तो भी पीलिया होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये दो प्रकार का पीलिया होता है।
1: जी,
2: तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है रुकावट, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है हमें रुकावट खत्म करने के लिए।
1: अच्छा।
2: और जो दूसरा पीलिया होता है हेपेटाइटिस वाला, तो उसमें खाली दवा से इलाज करते हैं।
1: तो जब पीलिया होता है तो उसमें बहुत सारी जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोगों की भ्रांतियां होती हैं कि हमें पीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मतलब जहाँ कुछ भी पीलापन है

0: तो उसे हमें बचना चाहिए। आप इसे कहाँ तक उचित समझते हैं?
1: नहीं नहीं ऐसा ये बिल्कुल उचित नहीं है। दो तीन चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि पीला रंग के कोई चीज़ खाने से कुछ होगा ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा ये कि कुछ लोग पीलिया झड़वाने की बात करते हैं, जाते हैं कि पीलिया झड़वा लेंगे
0: जी,
1: तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई उपचार नहीं होता है। जो पीलिया रुकावट से होता है वो उसका रुकावट दूर करनी पड़ती है, और जो पीलिया हेपेटाइटिस होता है उसका इलाज करना होता है। तो पीली चीज़ खाने से कुछ नहीं होता है। हाँ ये बात ज़रूरी है कि जो चीज़ें लीवर में जाके इनका पाचन होता है जिसमें प्रमुखता वसा फैट, वो चीज़ हमें बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ताकि लीवर के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े और उसको हीलिंग में आसानी से ठीक होने में सुगमता रहती है। तो वो चीज़ें नहीं खानी होती हैं जिससे लीवर के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े। बाकी पीली चीज़ों से हल्दी से कोई संबंध नहीं है।
0: अच्छा, यानी कि ये बात हमारे श्रोताओं की समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग जो मानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें भी हमारे समाज में हैं कि होता नहीं ऐसा लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा है, तो ये सारी बातें भी हमें स्पष्ट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लीवर के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको सही रखने के लिए क्या बचाव हमें करना चाहिए।
1: देखिए, जैसे कि हमें पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी आवश्यक होती हैं। एक तो व्यायाम, हम लोग को हमेशा व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर के अंदर मोटापा नहीं आने पाए। अगर वजन बढ़ेगा तो शरीर के सब अंगों पर उसका असर पड़ेगा, लीवर पे भी पड़ेगा, तो हमें उससे बचना होता है। अतिरिक्त वसा का सेवन ना करें, फैट का सेवन ना करें, चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ें कम से कम प्रयोग करें, और अगर प्रयोग करें भी तो फैट दो टाइप का होता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट का प्रयोग करें तो वो थोड़ा सा कम नुकसानदायक होता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है और लीवर के लिए।
0: किन चीज़ों में होता है?
1: जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, तो उसमें जो होता है मतलब फैट नहीं होता है, मतलब वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: इसके लिए हमें जांचें कौन सी करवानी होती है
1: लीवर के लिए? दो प्रकार की जांचें
0: पता कर पाते हैं।
1: दो प्रकार की जांचें करते हैं। एक तो उसमें खून की जांच करके पता करते हैं लीवर काम कैसा कर रहा है। दूसरा, उसका बनावट देखने के लिए हम इमेजिंग करते हैं। तो खून की जांचों में हम सीरम बिलिरुबिन कराते हैं जो पीलिया में बढ़ जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: SGPT कराते हैं, SGOT कराते हैं, ये एंजाइम होते हैं जो किसी भी लीवर की बीमारी में बढ़ जाते हैं। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज कराते हैं जो रुकावट में बढ़ जाता है।
0: ठीक है।
1: इसके अलावा लीवर का एक प्रमुख काम यह भी होता है कि खून को जमने में सहायता करता है वो, तो उसके लिए हम APTT एक टेस्ट होता है वो कराते हैं कि खून ठीक से जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो ये जांचें खून में कराते हैं। इसके बाद हमें उसका बनावट देखनी है तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं। फिर अगर कैंसर उसमें होने की संभावना है तो फिर उसमें सुई डाल के हम उससे थोड़ा सा सेल्स निकालते हैं, उसको हम FNAC बोलते हैं या बायोप्सी बोलते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कैंसर हो गया है तो फिर हम PET CT कराते हैं देखने के लिए कितने हिस्से में और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये सारी जाँचें कराते हैं लीवर के लिए।
0: और इसके लीवर के उपचार के लिए क्या करना चाहिए?
1: उसमें लीवर का उपचार दो तरीके से होता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसको कि सर्जरी से हटाया जा सकता है, ऐसे कोई रुकावट है, तो उसको तुरंत करवा देना चाहिए, उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे पथरी फंस गई है उसे निकलवाना चाहिए।
0: ठीक बात।
1: अगर पथरी बन गई तो भी निकलवाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो वो पीलिया करेगा, दूसरा वो कैंसर की संभावना रहेगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर रुकावट नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, तो उसके अलावा निर्भर करता है कि किस प्रकार का हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए कुछ दवाएं आती हैं, वो बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स।
0: अच्छा,
1: वो दिए जाते हैं। बाकी हेपेटाइटिस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे ग्लूकोज दे दिया जाएगा, डाइट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आराम कराया जाएगा, कुछ विटामिन दिए जाएंगे, तो उस सबसे इसका इलाज करते हैं और धीरे धीरे करके इलाज हो जाता है।
0: ये कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी तो नहीं होती?
1: नहीं, लीवर की बीमारियां खतरनाक तो होती हैं, अगर समय पर उनका उपचार ना किया जाए तो उसके बाद लीवर फेलियर की स्थिति में भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट उसका अकेला ऑप्शन होता है कि लीवर को दूसरे के लीवर लेके वहाँ पर लगाया जाए।
0: लेकिन ये बहुत ही सहज प्रक्रिया नहीं होती, इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ?
1: नहीं, ये बहुत खर्चीला और बहुत ही खतरनाक काम होता है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हम में से कोई नहीं जानता कि उसका कितना असर होगा और कैसा असर होगा।
0: और जिस व्यक्ति को ये लीवर लगाया जा रहा है वो उसका शरीर इस लीवर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा?
1: हाँ, वो भी विषय होता है, लेकिन ये कि उसके अंदर दवाएं दी जाती हैं पहले से कि उसकी इम्यूनिटी कम कर देते हैं ताकि जो लीवर लगाया जाए उसके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन ना करे शरीर।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन फिर भी संभावना रहती है कि शरीर उसको स्वीकार ना करे।
0: हम चाहेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी रहे कि हमें यकृत यानी लीवर की बीमारी हो ही ना, तो हम अपनी दिनचर्या को कैसा बना के रखें?
1: उसमें ये कि एक तो व्यायाम हमें नियमित करना चाहिए, दूसरा खाने पीने में मौसमी फल प्रयोग करने चाहिए। लहसुन का काफ़ी अच्छा देखा गया है, लहसुन प्रयोग करने से लीवर काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा गाजर का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया लीवर के बारे में, तो मौसमी फल खाएं, पानी खूब सारा पिए तो सबसे लीवर यूजली स्वस्थ रहता है। और सफाई का विशेष ख्याल रखें, स्पेशली पानी, क्योंकि बहुत सारे हेपेटाइटिस खाली पानी से ही फैलते हैं।
0: ये बहुत खास बात आपने कही कि पानी हम पिए, हमें पानी पीना चाहिए, हम पानी तो पी लेते हैं लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रख पाते कि पानी हम शुद्ध पी रहे हैं। रहे हैं या नहीं पी रहे हैं।
1: इसके अलावा वैक्सीनेशन भी होता है कि हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवा लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए का। तो सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम सभी करा लें, हेपेटाइटिस बी के लिए, क्योंकि उसमें
0: कोई भी लगवा सकता है।
1: हाँ बिल्कुल, कोई लगा सकता है, बच्चों से लेकर बड़े तक किसी उम्र में लगा सकते हैं।
0: यानी हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए
1: बिल्कुल, बाकी भी टीके आते हैं, हेपेटाइटिस बी का सबसे ज्यादा आवश्यक है लगवाना।
0: तो ये बहुत खास बात है सभी श्रोताओं के लिए, और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी, और जो नहीं सुन रहे हैं, यानी जो सुन रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को और अपने साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को ये बता सकते हैं कि अगर आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेते हैं, यानी कि आपको कोई बीमारी हो रही है तभी आप लगवाएं, अगर आप पहले से भी लगवा सकते हैं तो लीवर की बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं, रहने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, जिस भी बीमारी टीका लगाएंगे वो बीमारी होने की संभावना नहीं के बराबर होती है।
0: तो डॉक्टर अनिल कुमार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और लीवर से संबंधित लगभग सभी बातों की जानकारी आपने हमें दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। आने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: बहनों, अभी अभी आपने ये लीवर से संबंधित जानकारी सुनी। हमें उम्मीद करते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर से लगवाएंगे, और भी जो सावधानियां डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं उन सभी का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर अनिल कुमार ने। और अभी आप सुन रहे थे जी भेंट वार्ता, एक विषय था यकृत लीवर के प्रमुख रोग और इनसे बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार, और इनसे बातचीत कर रही थी अपनी बहन कल्पना प्रदीप। और बहनों, अब हम आपसे चर्चा करवे जा रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। बहनों, यूं तो सरकार द्वारा महिलाओं की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हीं में से एक है लाडली लक्ष्मी योजना। बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही प्रसिद्ध योजना है। आप सब ने तो इको नाम सुनो ही हुई है, जो बेटियों के जन्म, पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लाने कुल 1,43,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देते हैं। और इको उद्देश्य यही है बहनों कि समाज में बेटियों के प्रति सोच बदले, उनके लिंग अनुपात में सुधार हो, जे सब शुरू करवे के उद्देश्य से ये योजना शुरू करी गई है। इमें का होता है कि बेटी के पंजीकरण के बाद, अगर ऐसे आपकी कोई बेटी है तो आप उसका पंजीकरण करा सकते हैं, और पंजीकरण के तुरंत बाद 5 साल तक हर साल 6,000 रुपये और कुल 30,000 रुपये तक सरकार द्वारा जमा करे जाते हैं। और जैसे बेटी कक्षा 6 में जैसे प्रवेश करत है तो उस पर 2,000 रुपये की सहायता बेटी को दी जाती है। इसके अलावा जैसे बेटी कक्षा 9 में जब प्रवेश करत है तो 4,000 रुपये तक की सहायता उसको दी जाती है। इसके बाद कक्षा 11वीं में प्रवेश होता है तब 6,000 रुपये की राशि बेटी को दी जाती है। और इसके बाद जब बेटी कक्षा 12वीं में प्रवेश लेते हैं तब 6,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। तो बहनों, इस तरह से जिस सहायता राशि दी जाती है, और जब बालिका की आयु 21 वर्ष हो जाती है और यदि 18 वर्ष से पहले बेटी का विवाह नहीं हुआ है तो 1,00,000 रुपये तक की आखिरी राशि उनको बेटी को दी जाती है। और तो बहनों, हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ये योजना को फ़ायदा ज़रूर से उठाएं, और इसमें कुछ जो ज़रूरी दस्तावेज लगाते हैं वो हैं जैसे कि बालिका को जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता को आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता की पासबुक जो माता या बालिका के नाम से हो, और एक संगे संगे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लगाते हैं। तो बहनों, जे योजना को अगर आप लाभ उठाना चाहते हो तो जे ज़रूरी दस्तावेज आपके पास हो वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और बहनों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जे योजना को लाभ ज़रूर से उठाएं और जे योजना से ज़रूर से जुड़ें। और बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं जे लोकगीत, कैसे हमें अपनी बहनों के मनोरंजन को सुई ख्याल है। अब हम आपको सुनवाते हैं जे लोकगीत अशोक कुशवाहा और साथियों की आवाज़ में।

बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, आज है कारगिल विजय दिवस। हर साल आज के ही दिन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाओ जाता है। बहनों, जे दिवस मनावे को उद्देश्य यही है कि हम अपई बच्चों को अपई भारतीय सेना के शौर्य, अमर बलिदान और कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा फहरावे की जो ऐतिहासिक जीत है उसको हम बता सकें। अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करवे वाले वीर सैनिकों के बलिदान को याद करवे के लिए ही ये दिवस मनाओ जात है। आज हमें अपने बच्चों को वीरों की गाथाएं सुनावो चाहिए, उन्हें बतावो चाहिए कि शुरू से ही इस भारत भूमि पर अनेक वीर हुए हैं और उन्हीं वीरों के त्याग और बलिदान की वजह से ये भूमि सुरक्षित है। और इस भारत भूमि की सुरक्षा के लिए उन वीरों ने जो अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं और आज भी अपन देखते हैं कि सीमा पर जो जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो बहनों, जी बात हमें अपने बच्चों को ज़रूर से बतावो चाहिए ताकि बच्चे भी ऐसे वीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकें। तो बहनों, जी बात तो भाई वीरों के बारे में, और अब हम आपको सुनवाते हैं जी लोकगीत आभा खरी की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम सुर्खियों में
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संबोधन मन की बात की 136वीं कड़ी, जिसमें कारगिल विजय दिवस से लेकर आत्मनिर्भर भारत, जल संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन का हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार
2: अशोक जी, आपके दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
3: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है। उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं या भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी ही तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया, तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है
2: जी।
3: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। और इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। यानी आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों के तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की

0: लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। यानी दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया भी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
2: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्र गिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का, क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
0: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था और ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं। तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्र गिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ। 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भारी एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अब दुनिया का भरोसा भी, विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
1: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया।
2: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
0: बिल्कुल, साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और इसी महीने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की ओलंपियाड भी हुए थे और इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। और पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते और इनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ रहा है और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: अशोक जी, क्या वोकल फॉर लोकल की बात थी, वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है।
0: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उसमें किसी न किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बन रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ते ही हैं लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इस राष्ट्रभावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
0: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह तब तो इसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़ चढ़ कर भाग लेता है तब वो ये सब बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है, यानी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं, जिसके कारण इस चीजों में भारत आगे बढ़ रहा
1: है। और प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है, क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं और उसके चलते ये जो जल अभियान है यानी जो इसको संरक्षण करना है ये भी हर बार रहती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में कहा था कैच द रेन, तो इस अभियान की चर्चा की थी और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो ये जो संदेश सीधा जहां बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, इन सब को नई गति मिली है और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं, कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है ग्राउंड वाटर को, इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं, आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी

0: पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया। कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की।

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में, पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल।

0: अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है, जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफ़ी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
0: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
0: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ़ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमश्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएमश्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार, बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स

0: यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं, और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड, और जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
2: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया, कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले गिर जाएगा।
3: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान था आकाशवाणी भोपाल का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म 10 से। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 2005 में। के और शान की आवाज में ये गीत है, जिसे लिखा है पंछी जालोनी ने और विशाल शेखर का संगीत है।

केके और शान की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म 10 से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है 2008 में रिलीज हुई फिल्म युवराज से सोनू निगम, श्रीनिवास और साथियों की आवाज में गीत है, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत 2019 में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज से। इस गीत को गाया है दिलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली ने। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत किया है लियो जॉर्ज, डीजे चेतस और सुखबीर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब हम लेंगे छोटा सा अंतराल।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद ऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो
0: कहाँ?
4: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
4: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई।

0: थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
4: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

0: Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh bagged silver in men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है और ऋषि कांत सिंह चंबन ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकेनी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहान का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डेका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात की दियानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमा को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मुसवदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हें कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। वो सारिफीन उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा व नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने वजीर तालीम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद मुख्तलिफ स्कीमों और अहम इकदामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वजारत की एक मीटिंग की सदारत की। तालीम के वजीर मुमलिकत जैन चौधरी और वजारत के बहुत से सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में जनाब प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। जनाब जोशी ने कहा कि वो वजारत की कारकर्दगी, पॉलिसियों और इकदामात को पूरी तरह समझने के लिए फिलहाल जायजा मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा और अहम महकमा है और उनकी फौरी तरजीह वजारत तालीम के प्रोग्रामों और नए इकदामात पर अमल दरामद के पहले इसकी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना है।
3: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादर वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुदकफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुँच रहा है, खाह वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तावुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1 को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सख्र फख्र से बुलंद हुआ है। कैच द रैन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्कगीर मुहिम जारी है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
1: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागु चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का अख्ताम करते हुए योम आज़ादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्याल और तजवीज़ों से नवाजें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए

जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तसव्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्त

0: अनुभव आती है और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुष्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तस्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाइस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केवनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाइस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुक्काम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समंदरी सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नष्ट किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
3: ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषि कांत सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की सलाहत के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा का। श्रोताओं, रेडियो केवल ध्वनि का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, स्मृतियों और अपनत्व का एक ऐसा पुल है जो दूरियों को भी निकटता में बदल देता है। कभी एक पत्र लिखने में कई दिन लगते थे और उनमें जो आत्मीयता होती थी वो अनमोल होती थी। उन्हीं पत्रों, उन्हीं चिट्ठियों के माध्यम से आज आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उन्हें पूरे स्नेह के साथ आप तक वापस सप्रेम पहुंचा रहे हैं। श्रोता, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जमाने में आज भी देश के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से आपके प्यार भरे पत्र इस बात के साक्षी हैं कि संगीत लोगों के दिलों को जोड़ता है और ये चिट्ठियां, ये पत्र उसका माध्यम बन रहे हैं। आपकी हर चिट्ठी अपने साथ कोई ना कोई याद, कोई मुस्कान, कोई भावना या किसी प्रियजन का संदेश लेकर आती है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पसंद का आपकी फरमाइश का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है 2004 में रिलीज हुई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, जिस गीत की फरमाइश की थी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश बक्सर बिहार से की थी शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने। तो ये था कार्यक्रम का पहला गीत और अब देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से आई है। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है मध्य प्रदेश रीवा जिले से। इस गीत को सुनना चाहा है जया, अभिषेक और उनके पूरे परिवार ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं आपको बता दें, ये गीत हमने लिया है फिल्म क्रिमिनल से, जिसकी फरमाइश अभी की गई थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1994 में। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल इंदिवर के हैं और संगीत है एम करीम का।

तेरे पास पास। श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिमिनल से, और इस गीत की फरमाइश की थी कवन कॉलोनी बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था रीवा मध्य प्रदेश से जया, अभिषेक और उनके परिवार ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। देश के विभिन्न भागों से लगातार हमें पत्र प्राप्त होते हैं जिसमें आपकी सुंदर लिखावट, स्नेह भरे शब्द और संगीत के प्रति आपका अनुराग हमें हमेशा प्रेरित करता है। आपके कई पत्र तो ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है मानो आप हमारे सामने बैठे हों और अपनी पसंद का गीत स्वयं सुनाने का आग्रह हमसे कर रहे हों। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से आई है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन नारा ने, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहब्बतें से।

श्रोताओं, ये गीत है फिल्म मोहब्बते से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 2000 में। इस गीत को गाया है उद्भव मनोहर शेट्टी और साथियों ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और जतिन ललित का बेहतरीन संगीत। तो आनंद लीजिए इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म मोहब्बतें से गीत अभी आप सुन रहे थे। उद्भव और मनोहर शेट्टी की आवाज में जतिन ललित का संगीत था और बोल थे आनंद बख्शी के। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आइए देखते हैं अगली चिट्ठी कहां से आई है और किस गीत की फरमाइश इन्होंने की है। श्रोताओं, अगली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इस गीत को सुनना चाहा है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और नारायणपुर कोटवा से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और हैप्पी राय ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के बारे में बता दें आपको, ये गीत है 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग से। अलका याग्निक और कुमार सानू की बेहतरीन आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और संगीत है नदीम श्रवण की जोड़ी का।

0: श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, और कार्यक्रम का अंतिम गीत, इस गीत की फरमाइश आई है सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और उनके परिवार की तरफ से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है अकोला महाराष्ट्र गांधीबाग से कटनकर परिवार ने, और साथ ही राजकोट गुजरात से मधुसूदन भट्ट और उनके पूरे परिवार ने। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम के इस अंतिम गीत का।
1: फिर से

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत 2024 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज में यह गीत था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर की जोड़ी ने। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा को। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ संतूर रिसाइटल बाय इंडियाज फर्स्ट फीमेल संतूर मैस्ट्रो विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल हु इज द ओनली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द सूफियाना घराना टू अचीव इंटरनेशनल अक्लेम इन संतूर प्लेइंग।
0: डॉक्टर वर्षा जी ने गायन और तबले की शिक्षा मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
1: डॉक्टर वर्षा जी बिगेन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव्ड प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मैस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
0: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉ. वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
1: Currently serving as a professor of music at the Government Girls PG College of Excellency Ujjain, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
0: Vidushi Varsha Agrawal भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। When her fingers dance on the 100 strings of santur, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
0: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve alap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat जो त्रिताल में है मध्यगत एक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल अ मध्यगत इन एक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल। Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a drutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: सुश्री डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर

0: कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
0: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा